0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাৰ পৰা ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মনোজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ बिनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण

और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म

0: सुशाम एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित

0: रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। यह शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश

0: सरकार ने लखनऊ अधिग्रहण कांड में चार अधिकारियों को निलंबित किया, चार आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे चार जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट हैज बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ फास्ट ग्रोइंग क्रेडिबल एंड रिलायबल ग्लोबल पावर। President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
2: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi itna fayda hota hai, kyunki ye naya consumer hai jo economy ko drive karta hai, usse ultimately middle class ke liye avsar bante hain, yani garibi kam hona keval welfare ka hi vishay nahi hai, yah avsaron ke vistar ki gatha hai, nayi एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल प्रेजेंट द पद्मा अवार्ड्स ड्यूरिंग द सेकंड सिविल इन्वेस्टिशर सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन दिस इवनिंग। पद्मा अवार्ड्स, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री, आर कन्फर्ड इन थ्री कैटेगरीज, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are among the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
1: News Services Division of Akashwani is broadcasting special programs as part of our series People's Padma on Akashwani. Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees.
4: I find the idea for human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
5: Designed many equipment for measurement of materials, actually characterization of the materials like resistivity, thermoelectric power, which is a very sensitive property. All these things we developed it ourselves at a very, very low cost.
6: In 10-12 years, I was learning to make a glue and not make a business.
7: I started learning the tarpa when I was 10 to 12 years old. This ancient art is a matter of pride for us Adivasis, and we have preserved it.
8: My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me, you should become a doctor or do some research.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनकी योगदान

0: अभियान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सैनिक भाइयों, मैं पूनम बरुआ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में। हम अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत। 1:40 पर कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। प्रस्तुत है पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत सोनू निगम की आवाज में साथिया फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत दिल मांगे मोर फिल्म से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत श्रेया घोषाल की आवाज में चीनी कम फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गैंगस्टर फिल्म से ये गीत। आवाज है के की, जिसके बोल लिखे हैं सैयद कादरी ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

हमारे अगले कार्यक्रम गीत अपना धुन पराई की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल बुधवार है और रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आरंभ होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12 पर। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम फिल्मी नगमे।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम तरंग। 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लरी। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर पेश है कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आए। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए वेक अप सिट फिल्म से शंकर महादेवन की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मन्ना दे और लता मंगेशकर की आवाजों में श्री 420 फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आए। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए पुकार फिल्म से उदित नारायण और स्वर्णलता की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आए। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में, धूम फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, बंती और बबली फिल्म से। आवाजें हैं शंकर महादेवन, जावेद अली और अलीशा चिनॉय की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसमें प्रेम, दोस्ती और किस्मत के रिश्तों की बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में पर्दे पर उतारा गया है। जी हाँ, आज की हमारी फिल्म है दिल तो पागल है। साल 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन किया था प्रसिद्ध फिल्मकार यश चोपड़ा ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आ

फिल्म की कहानी राहुल, पूजा और निशा के इर्द गिर्द घूमती है। राहुल एक डांस ग्रुप का निदेशक है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त निशा उसे पसंद करती है, लेकिन राहुल उसे सिर्फ एक दोस्त मानता है। दूसरी ओर पूजा एक ऐसी लड़की है जो सच्चे प्यार और किस्मत पर विश्वास करती है। फिर एक दिन किस्मत राहुल और पूजा को मिलाती है और शुरू होती है एक खूबसूरत प्रेम कहानी।

90 दशक की रोमांटिक फिल्मों की बात होती है, दिल तो पागल है का नाम सबसे पहले लिया जाता है। फिल्म में राहुल एक नाटक तैयार कर रहा होता है जिसका नाम है माया। राहुल के अनुसार माया ऐसी लड़की है जो अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि असल जिंदगी में भी पूजा ठीक वैसी ही सोच रखती है।

फिल्म में एक समय ऐसा आता है जब निशा को एहसास हो जाता है कि राहुल के दिल में उसके लिए प्यार नहीं है। यह किरदार करिश्मा कपूर ने इतनी खूबसूरती से निभाया कि उन्हें इस भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।

यश चोपड़ा की फिल्मों की पहचान ही रही है शानदार संगीत और यादगार प्रेम कहानियां। दिल तो पागल है उन्हीं में से एक है। फिल्म के अंत में किस्मत अपना खेल दिखाती है। अजय समझ जाता है कि पूजा और राहुल एक दूसरे से प्यार करते हैं, वह दोनों को मिलाने का फैसला करता है। आखिरकार राहुल और पूजा अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर समाप्त होती है।

इसी गीत के साथ हमारा आज का एक ही फिल्म के गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर से मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 529.1 मीटर पर।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब पेश है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गूंज उठी शहनाई फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फूले बिसरे गीत। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत आशीर्वाद फिल्म से मन्ना दे की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मुगले आजम फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, गीता दत्त की आवाज में साहिब, बीवी और गुलाम फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए बायजू बावरा फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage, and in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम

0: कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंज।
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये

0: ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
3: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचार के बाद एक बार फिर आप सभी का आज के प्रसारण में स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है। आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन प्रस्तुत है। कार्यक्रम का पहला गीत सनम रे फिल्म से अरमान मलिक और पलक मुच्छल की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मन्ना दी की आवाज में आनंद फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में ब्लैकमेल फिल्म से।

0: सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए सीता और गीता फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में।
1: अरे अरे ए ए ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाजों में रेडियो फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में, मेरे महबूब फिल्म से।

इसी गीत के साथ गुंजन कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। सैनिक भाइयों के लिए भी समाप्त होता है आज का प्रसारण। कल 12:10 पर आपके खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूनम बरुआ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है वर्टिगो, सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, यानी चक्कर आने की समस्या, लक्षण, कारण और इलाज। दोस्तों वर्टिगो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को महसूस होता है जैसे वे खुद या उसके आसपास की चीजें तेजी से घूम रही हो और आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। तो क्या है ये परेशानी और क्या है इसका इलाज, इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ढिकाव, जो हैं न्यूरोसाइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर विनीत गुप्ता जो हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर विनीत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मैडम
3: जी। नमस्कार
1: जी। डॉक्टर विकास, सबसे पहला सवाल है कि वर्टिगो है क्या और ये कितने प्रकार का है?
3: जी देखिए, वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, आम भाषा में बोलते हैं। और चक्कर आने का मतलब ये है कि आपका हेड जो है वो मूव नहीं कर रहा है, आप मूव नहीं कर रहे हैं
1: जी।
3: लेकिन आपको ऐसी सेंसेशन होती है कि चारों तरफ की दुनिया मूव कर रही है, यानी कि आपके दिमाग में चक्कर है, एक्चुअल चक्कर नहीं है। तो वर्टिगो देखिए प्राइमरीली दो तरह का होता है, पेरिफेरल जो कि डॉक्टर साहब बताएंगे क्योंकि वो कान से रिलेटेड होता है। सेंट्रल जो वर्टिगो है वो अक्सर देखिए कॉन्टिन्यूस होता है, इंटरमिटेंट कम होता है और वो लो इंटेंसिटी होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन काफी बॉदरसम होता है। तो जो सेंट्रल कॉज है वो सीरियस होते हैं अक्सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को स्ट्रोक आ गया, यानी कि लकवा मार गया, तो स्पेशली जो पोस्टीरियर साइड का स्ट्रोक होता है जिसको हम पोस्टीरियर सेरिब्रल सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं, तो वो एक सीरियस किस्म का जिसको बोले कॉज है। या इसके अलावा देखिए माइग्रेन है, पोस्टीरियर माइग्रेन या वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं, वो एक कॉज हो सकता है। या फिर हेड इंजरी के बाद भी चक्कर आ सकते हैं। तो मोटे तौर पे कई और भी कॉज हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सेंट्रल कॉज अक्सर सीरियस हो सकते हैं। पेरिफेरल कॉज के बारे में
1: डॉक्टर विनीत।
2: जी मैम। मैम पेरिफेरल कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस नहीं होते हैं, बट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो थोड़ा सा खराब करके रखते हैं, क्योंकि पेशेंट अच्छे से अपना रूटीन वर्क नहीं कर पा रहा है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। मेनली जो अपने पेरिफेरल कॉजेज होते हैं वो ईयर से रिलेटेड होते हैं। ईयर में जैसे बीपीबीबी, वो पोजीशन चेंज करेगा पेशेंट, अपनी टर्न हेड करेगा या करवट लेगा, उसको चक्कर आएगा। और भी कॉजेज होते हैं काफी
1: जी, इस पर बात करेंगे हम। पहले सुन लेते हैं गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या की, और इस पर हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विकास ढिकव, जो है न्यूरो साइंटिस्ट, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत गुप्ता, जो है ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, बात अगर वर्टिगो के लक्षण और कारण की करें तो कौन से वो लक्षण है जिनसे कोई ये जान सकता है कि वो इस समस्या से प्रभावित है, और वर्टिगो होने के कारणों में कौन से कारण शामिल है?
1: जी, देखिए, अक्सर ये चक्कर से ही शुरू होता है और ये अनआइडेंटिफाइबल होता है कि चक्कर की वजह क्या है, कि गर्दन में चोट लगी है या सिर में चोट लगी है, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, या फिर आपको लकवा आया है
0: जी,
1: या कोई आपको एक क्रॉनिक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है। तो कारण जो है इसका एकदम से पता नहीं चलता है, और अक्सर देखिए डॉक्टर को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है ये पता करने के लिए कि ये पेरिफेरल कॉज है, यानी कि कान से रिलेटेड है। अक्सर 80% कॉज कान से रिलेटेड होते हैं या फिर ये ब्रेन से रिलेटेड है। लेकिन ब्रेन की काफी सारी बीमारियां ऐसी होती है कि जिसमें जो चक्कर है वो एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे सामने आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं, माइग्रेन मतलब सिरदर्द। अक्सर सिरदर्द से ही आप माइग्रेन को आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन इसमें सिरदर्द नहीं होता वेस्टिबुलर माइग्रेन में, इसमें चक्कर ही आते हैं। तो चक्कर से शुरू होता है। कभी कभी देखिए बीमारी इतनी सीरियस होती है कि दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर हो तो उसकी भी मैनिफेस्टेशन चक्कर से शुरू होती है। लेकिन हम अक्सर देखिए एज अ न्यूरोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि अगर मान लिया चक्कर के साथ साथ हेयरिंग लॉस है तो आप पहले कान का जो सिस्टम है उसको चेक करवाइए, यानी कि हियरिंग अपरेटस है उसको चेक करवाइए, ऑडियोमेट्री करवाइए, और बाकी टेस्ट होते हैं सुनने की जांच जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद में ही बाकी जो कॉजेज है उनके ऊपर फोकस होता है। लेकिन ये तो हुआ देखिए कारण की बात, जो लक्षण एक तो हुआ चक्कर आना, फिर आपको दो दिख सकते हैं, डिप्लोपिया या निगलने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, या आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, या बेहोशी जैसी हालत हो सकती है, या आप लड़खड़ा सकते हैं, या आपके हाथ और पांव में या हाथ पांव एक साइड का कमजोरी आ सकती है जो कि स्ट्रोक का लक्षण होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल जिसको सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं, और एकदम से जी मिचलाता है या बहुत ज्यादा उल्टी आती है। लेकिन जो एक चीज कंसिस्टेंट है वो स्पिनिंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जो पेरिफेरल कॉज है उनके बारे में डॉक्टर विनीत
0: जी,
2: जैसा सर ने बताया सेंट्रल कॉज के बारे में जो दिमाग की वजह से होते हैं चक्कर, उसमें जो है बहुत सारी चीजें, जैसे सर ने बताया लड़खड़ाएगा आदमी, चल नहीं पाएगा अच्छे से, बट जो पेरिफेरल वर्टिगो होता है जो हमारे कान से रिलेटेड होता है उसमें ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो उसी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड है या कान से रिलेटेड है। कान से रिलेटेड होता है तो यूजली जो है उसमें चक्कर होता है, चक्कर के साथ पेशेंट ये बोलेगा कि मैं अपनी करवट बदल रहा हूँ, पोस्चर चेंज कर रहा हूँ तो मुझे चक्कर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं BPVV। और फिर कान की अदर प्रॉब्लम
0: BPVV को अगर आप
2: बेनाइन पैराक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो बोलते हैं हम लोग इसको, तो उसका मीनिंग ही यही है कि पोजिशन चेंज किया आपने, करवट ली या आपने टर्न करा किसी साइड में हेड और आपको चक्कर आया, तो ये इसका इनिशियल साइन होता है कि पेशेंट इससे जज कर सकता है कि हाँ मुझे कान
0: ऐसा
2: की प्रॉब्लम
0: है, अगर
2: तो हम मुझे कान को ही दिखाना चाहिए, और हियरिंग डिक्रीज हो रही है तो मेरे को ENT को पहले दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ एक न्यूरोलॉजिकल कॉज भी है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस और वेस्टिबुलर लैबरिंथाइटिस, मतलब कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया जो हमारा इनर ईयर है उसमें, तो उसमें हमारी हियरिंग भी डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से हो रहा है तो वो शॉर्ट शॉर्ट एकदम कान की प्रॉब्लम है।
0: सर, ये जो आपने बताया हियरिंग डिक्रीज होना, ये एक कान में होता है या दोनों में, या कभी कभार एक में भी?
2: रेयर, मोस्टली वन ईयर का रहता है लैबरिंथाइटिस, बहुत रेयरली है कि वो दोनों ईयर्स को इन्वॉल्व।
0: सर, इसमें क्या दर्द भी रहता है?
2: नहीं, दर्द नहीं होगा इसमें, चक्कर और उल्टी।

0: खड़े हुए तो आपको चक्कर आ रहा है, या आपने ऊपर से कोई सामान उठाना है, नेक ऊपर करा, एक्सटेंड किया, फिर आपने नीचे सर किया अपना, तो चक्कर आने लग गया, या आपने करवट अपना बॉडी टर्न करा, राइट साइड या लेफ्ट साइड पोजीशन चेंज किया, चक्कर आ रहा है। तो ये ईयर का साइन है कि ईयर का इन्वॉल्वमेंट है
1: जी। सर इससे एक को रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: हाँ जी,
2: मेरे को डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जो ये चक्कर भावनात्मक रूप से भी आते हैं क्या चक्कर, जैसे हमारी बिटिया को जैसे कभी कोई शादी के फंक्शन में जहाँ भीड़ होती है, या जैसे कभी कभी बार बार तो नहीं होता है, जैसे कभी पूजा करते समय या कभी ऐसा माहौल बन गया तो भरा परिवार
1: जी,
2: में
1: जी।
2: तो उसमें उसको बेहोशी चक्कर जैसा आ जाता है, मतलब ये महीने में मतलब बार बार नहीं होता, कभी कभी बार थोड़ी देर में ठीक हो जाता है
1: जी।
2: जैसे कभी शादी फंक्शन में या पूजा पाठ करते समय
3: जी। देखिए दो सिचुएशन है, एक तो ये है कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जो क्रॉनिक अनअटेंडेड और मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रेस है, उसकी वजह से इटसेल्फ चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से एंजाइटी होती है और एंजाइटी से स्पिनिंग सेंसेशन आ सकती है, एक बात। लेकिन अक्सर देखिए न्यूरोलॉजिकल प्रैक्टिस में ये होता है कि किसी को मिर्गी की बीमारी है और आके मरीज ये बोलते हैं कि हमें चक्कर आते हैं, या रिश्तेदार बोलते हैं इनको चक्कर आते हैं, और चक्कर से उनका मतलब होता है दौरा आना। तो दौरा आना इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम, कि वो बिल्कुल अलग तकलीफ है, उसको मिर्गी की तकलीफ बोलते हैं। उसमें क्या है कि चक्कर खा के मरीज गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और एक किस्म से बोलें कि टॉयलेट निकल जाता है, या फिर जो दांते हैं एकदम से भिग जाती हैं, जीभ कट जाती है, पसीना आता है, आंखें फिर जाती हैं, तो वो बीमारी बिल्कुल अलग है। तो उसको हम वर्टिगो से कंफ्यूज ना करें, वर्टिगो तो एक अलग किस्म की तकलीफ है। हालांकि जो एपिलेप्सी के लिए दवाइयां ली जाती हैं, जैसे फेनिटोइन है फॉर एग्जांपल, इसकी अगर डोज हाई हो जाए, कार्बामाज़ेपिन की डोज अगर हाई हो जाए, तो भी वर्टिगो की सेंसेशन हो सकती है, वो तकलीफ बिल्कुल अलग है। तो जहां तक इन्होंने अपनी बिटिया की बात की है, तो हो सकता है बिटिया को इन दोनों में से एक हो या दोनों में से कुछ भी ना हो, तो क्योंकि वो तो देखिए इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्योंकि सिम्टम है तो इनको इवैल्यूएशन करवाना चाहिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट को या ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, तो इट लुक्स लाइक कि कोई अंडरलाइंग जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो उसके लिए साइकाइट्रिस्ट से भी बात कर सकते हैं।
1: उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा आज का विषय। हमारा विषय है वर्टिगो, सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, यानी चक्कर आने की समस्या, लक्षण, कारण और इलाज। और इस पर हमारे साथ है डॉक्टर विकास ढिकव और डॉक्टर विनीत गुप्ता। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी
3: जी,
1: वर्टिगो ये कितनी गंभीर समस्या है?
3: देखिए सेंट्रल वर्टिगो तो अक्सर गंभीर होती है, क्योंकि स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, ट्रॉमा है, हेड इंजरी है, या नेक इंजरी है, विप्लैश इंजरी जिसको बोलते हैं, डैशबोर्ड इंजरी, अक्सर एकदम से आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मारे किसी ने बहुत तेजी से और सिर जो है डैशबोर्ड पे लगा, विप्लैश इंजरी हो सकती है। तो ये गंभीर किस्म की वर्टिगो होती है, लेकिन कुछ ऐसी वर्टिगो भी होती है जो कम गंभीर होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टिबुलर माइग्रेन है, तो वो उसको हम गंभीर माइग्रेन नहीं बोलते, लेकिन माइग्रेन की जो आम दवाइयां हैं जैसे सोमाट्रिप्टान, राइजाट्रिप्टान, तो वो वेस्टिबुलर माइग्रेन में काम नहीं करती हैं, तो उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि बीमारी और उसके कारण तो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मरीज को देखिए इमीडिएटली क्या करना चाहिए, ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप बैठ जाइए, आप चलिए मत, आप सीढ़ी से अगर उतर रहे हैं तो आपको बैठना परम आवश्यक है, या अगर आपको ज्यादा चक्कर आ रहे हैं तो आप लेट जाइए, उस करवट लेटिए जहां पे आपको स्पिनिंग सेंसेशन कम से कम महसूस हो रही है। शाम को आप कहीं जा रहे हैं, अंधेरा है, तो आप डबली केयरफुल रहिए, आप टकरा सकते हैं, अनस्टडी हो सकते हैं
1: जी।
3: या अगर आप हाइट पे हैं, पहाड़ों पे हैं, तो आपको पहाड़ों की वजह से भी एक्रोफोबिया की वजह से वर्टिगो सेंसेशन हो सकती है, या फिर अगर आपको वर्टिगो है तो वो एक्सेंचुएट हो सकती है। तो इसके अलावा अगर आपको बैलेंस में दिक्कत है, आप 60 से ऊपर हैं, तो आप छड़ी लेके चल सकते हैं, इट मे नॉट साउंड ग्लैमरस, लेकिन छड़ी लेना आपके फायदे में ही है, आप गिरेंगे नहीं। एक होता है देखिए एक्चुअल गिरना, और एक है गिरने का डर होना। तो गिरने का जो डर है, इस पे तो डॉक्टर विनीत थोड़ा सा आगे बताएंगे वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन के बारे में, लेकिन गिरने का जो डर है ये भी बड़ा एक कॉमन फिनोमेना है। इसमें क्या है कि आप शादी में, ब्याह में, बारात में, मंदिर में जाने से डरते हैं, आपको लगता है आप अनस्टडी हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। तो ये जो सेंसेशन है, इसके साथ जिया जा सकता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर जरूर करती है, लेकिन ब्रेन और आई का कोऑर्डिनेशन एक किस्म से दोबारा किया जा सकता है, ब्रेन को रीट्रेन किया जा सकता है। तो जो ये जनरल प्रिकॉशन

0: सही है, आप जरूर रखिए।
1: जी
0: और इसके साथ साथ स्पेशली देखिए गर्मी है अभी बहुत ज्यादा, जून का महीना चल रहा है, पानी खूब पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, चाय और कॉफी का सेवन कम से कम, नमक जो बोलेंगे सलाद पे कम से कम, चीनी कम से कम, क्योंकि नमक और चीनी से कान का प्रेशर बढ़ता है तो पेरिफेरल वर्टिगो बढ़ सकता है। और जिसको बोलते हैं जिमिंग, बहुत सारे जो यंगस्टर्स है वो जिमिंग करते हैं और उसके बाद भी कुछ लोगों को वर्टिगो हो जाते हैं, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो उसकी वजह से भी वर्टिगो हो सकता है। तो इसका भी ख्याल रखिए कि अगर आप जिमिंग कर रहे हैं तो अंडर एक अच्छे ट्रेनर के अंडर ही आप करें, ऐसे नहीं कि मनमाने आज 50 किलो वजन उठा लिया, कल 25, फिर 75 किलो उठाने की कोशिश की, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है।
1: डॉक्टर विनीत, इसी पर करेंगे आपसे बात, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, कॉल लाइन पे उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 44 वर्ष है, मेरे सर में भारीपन रहता है, गर्दन अकड़ी रहती है, कमर में भी दर्द रहता है और मेरे कान में छेद है, तो मैं कारण पूछना चाहता हूँ, कान में जो पर्दे में छेद है इसके कारण है या कोई और है? चक्कर भी आता है कभी कभी।
3: कान में पर्दे के छेद की वजह से चक्कर आना बहुत मुश्किल चीज है
1: जी।
3: उसके साथ कुछ और यहाँ पर तो आपको बीपी बीबी का प्रॉब्लम हो, कान में जो हमारी कैनाल है उसमें पार्टिकल फॉर्मेशन हो गया हो, या हमारी जो कान की बैलेंसिंग कैनाल है उसमें कुछ माइनर छेद साइनस टाइप का फिस्टुला फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से चक्कर आ सकता है, बट वो रेयर चीज है। केवल छेद की वजह से चक्कर आना बड़ा मुश्किल चीज है, छेद की वजह से नहीं होगा, होगा तो या फिर तो अंदर पार्टिकल या फिर वो आपके जो गर्दन जकड़ी हुई है और जो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है उसकी वजह से चक्कर आ सकता है, और हो सकता है आपको माइग्रेन की भी शिकायत हो जिसकी वजह से सर में दर्द और उसमें नेक में आपकी जो गर्दन में जकड़न है वो हो रही हो और उसके साथ में आपको जो है चक्कर आ रहा हो।
0: ये हो सकता है कि इनको होलोक्रेनियल हेडेक बता रहे हैं, नेक की प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से रेफर पेन हो इनको।
1: जी
3: जी
1: डॉक्टर साहब, अभी जैसे डॉक्टर विकास ने बताया कि वर्टिगो की स्थिति क्या है, आप क्या कहेंगे इस पर?
3: जी मैम, बेसिकली
1: कितनी गंभीर स्थिति है ये?
3: जो पेरिफेरल है उसमें गंभीरता नहीं है, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग उस वे में कि जैसे सर ने पहले ही बताया कि आप ड्राइव कर रहे हो और आपको चक्कर आ गया तो लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि आप या स्टेयर से या माउंटेन से नीचे आ रहे हैं तो वो उन सारी कंडीशन में थ्रेटनिंग है। जो सेंट्रल कॉजेज होते हैं जो ब्रेन की वजह से है, वो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं चल रहा, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। वो अगर चीज सेफ है, ब्रेन हमारा ठीक है नॉर्मल है और पेरिफेरल हो रहा है कान की वजह से, तो ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो
4: मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा नाम दीपांशु है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: सर मैं डेली प्रोग्राम सुनता हूँ बट आज का ये प्रोग्राम मेरे को मतलब मुझे कॉल करनी पड़ी आपको।
1: जी जी।
4: मैडम मेरे फादर है, ही इज अराउंड 66 इयर्स ओल्ड।
1: जी।
4: उनको 4 साल पहले बेल पाल्सी का अटैक आया था।
1: जी।
4: वो रिकवर कर गए थे अच्छे से और 2 साल पहले उनको वर्टिगो भी आइडेंटिफाई हुआ, यही बीपी पीबी वाला जो है इशू।
1: जी जी।
4: तो क्या डॉक्टर साहब ये चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं या उस बेल पाल्सी की वजह से ये चीज ट्रिगर हुई है?
3: नहीं, ये दोनों चीजें आपस में, तो क्योंकि वो 4 साल पहले हुआ और ये 2 साल पहले हुआ है तो ये आपस में इंटर रिलेटेड तो है नहीं। अगर बेल्स पाल्सी की वजह से होता तो वो न्यूरोलॉजिकल कॉज होता, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, वो उसी टाइम पे प्रेसिपिटेट करता 4 साल पहले। अभी 2 साल पहले हो रहा है तो आपको डिटेल टेस्टिंग, इसके लिए एक वीडियो निस्टेक्मोग्राफी एक टेस्ट कराना चाहिए उनका, उससे रूल आउट करना चाहिए कि उनके कान की वजह से कैनाल में पार्टिकल फॉर्मेशन की वजह से चक्कर आ रहा है, और अगर एमआरआई ब्रेन हो चुका है वो नॉर्मल है तो मेरे ख्याल में आप नियर बाई अपने ईएनटी डॉक्टर जो कि वर्टिगो के स्पेशलिस्ट हों उनसे वीडियो निस्टेक्मोग्राफी करवाएं और उससे एक बारी रूल आउट करवाएं, क्योंकि उससे हम कई बारी सेंट्रल कॉज भी रूल आउट कर लेते हैं।
4: तो सारे टेस्ट करवा के वो सब नॉर्मल आते हैं, इसीलिए
3: नहीं नहीं ये वीडियो निस्टेक्मोग्राफी आपको टेस्ट कराना है।
4: ठीक है, वीडियो स्टेनोग्राफी,
3: वीडियो निस्टेक्मोग्राफी VNG करके बोलते हैं, आप ये टेस्ट कराइए और इसके लिए पहले आपको 48 घंटे पहले चक्कर की सारी दवा बंद करके तब जाएं।
4: ठीक है,
1: बहुत अहम बात बताई आपने जी डॉक्टर। आज का हमारा कितना इम्पोर्टेंट विषय है और इसी पर देखिए लगातार कॉल आ रहे हैं हमें, एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल भी। हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: सर, मैं लोधी रोड नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे को ना कंधे में, लेफ्ट कंधे में ज्यादा दर्द होता है और गर्दन में भी
1: जी।
2: और मैंने ब्रेन का भी MRI कराया था, वो भी नॉर्मल था और मुझे चक्कर भी आते रहते हैं, ऐसा लगता है कई बार मैं कि गिरने लगता हूँ, गिरने लग जाता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि दर्द बैठ जाता है, तो दर्द मुझे रेगुलर लेफ्ट कंधे में बहुत रहता है स्पाइन का भी मैंने एमआरआई कराया, वो भी ठीक आया था। तो जी, जी, एक जी. तो ये बता दीजिए, दूसरा डॉक्टर विकास कहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा ये मैं सुन नहीं पाया था।
0: जी जी जी जी जी, मैं सरकारी सेवा में हूँ, लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि आपको लेफ्ट कंधे में दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है?
2: मेरी उम्र जी 53
0: है। 53 में अगर कंधे में, लेफ्ट कंधे में दर्द रहता है, तो आप एक बार शुगर की जांच कराइए, क्योंकि
2: शुगर भी ठीक है जी।
0: शुगर नॉर्मल है आपकी, तो आपने अगर कोई वजन उठाया हो सकता है उसकी वजह से रहता हो, लेकिन नेक में भी आपने बताया कि दिक्कत रहती है, तो जो
2: नेक में भी लेफ्ट साइड ही दर्द रहता है ज्यादा।
0: समझ गए, तो पोस्चर से रिलेटेड हो सकता है। कोई गर्दन में आपको चोट तो नहीं लगी थी?
2: नहीं, चोट भी नहीं, और मैंने वजन वगैरह कुछ नहीं उठाया, ये तो लगभग 5-6 महीने हो गए।
0: समझ,
2: काफी देर
0: कभी,
2: भी खाता रहता
0: हूं, कभी, कभी, कभी कभी क्या है, पोस्चरल होता है और ये स्लो डिजेनरेशन होता है, तो उसकी वजह से हो जाता है, या कभी कभी जैसे 50 के बाद में ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि कोई नस दबी हुई हो हल्की सी। तो आपने एमआरआई ब्रेन तो करा लिया, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन स्क्रीनिंग भी कराई जा सकती थी, लेकिन आपके लिए उचित ये रहेगा कि आप एक सॉफ्ट कॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं।
2: आप कौन से हॉस्पिटल में बैठते हैं, सरकारी में?
0: जी जी जी, मैं पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में था, अभी भारत सरकार में हूँ। तो आप तो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके और आप अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य तकलीफ है, लेकिन एक बात बिल्कुल खास है कि आप बता रहे हैं कि काफी समय से ये दिक्कत है, तो इसको
2: खड़े भी नहीं हो पाता हूं, मैं
0: समझ गया आपकी बात। ये सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो बोलते हैं, सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो की वजह से आपको ऐसा हो रहा है, लेकिन आप जो रिहैब है वो तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, आपको जहां भी आपको लगे सीढ़ियां आप उतर रहे हैं, तो आप रेलिंग पकड़ के उतरिए, नंबर एक। नंबर दो, अनइवन सरफेस पे केयरफुल रहिए, शाम को अगर अंधेरा है तो वहां पे डबली केयरफुल रहिए, आप गिर सकते हैं अकेले, अगर संभव हो तो आप किसी के साथ निकलें बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको अपने वर्टिगो को मैनेज करना पड़ेगा।
2: डॉक्टर साहब, मेरी छोटी सी ये बात है, मैं मान लो मैं सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी जाऊँ, तो किस स्पेशलिस्ट को दिखाऊँ, इसके क्या बीमारी से?
0: देखिए, आपको पहले तो ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक्स को दिखाने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हो सकता है कोई आपको एमआर एंजियोग्राफी सजेस्ट करे, लेकिन आपका जो कॉज है वो वैस्कुलर लग नहीं रहा। तो नॉर्मली एंजियोग्राफी, एमआर एंजियोग्राफी हम वैस्कुलर कॉज को रूल आउट करने के लिए करते हैं, लेकिन ये भी होता है कि बहुत बार देखिए हार्ट में तकलीफ है, लेकिन आपका जो वर्टिगो है वो नॉन कार्डिक कॉज की वजह से होता है। तो आप तो एक सरकारी अस्पताल में जाके इवैल्यूएशन करवाइए, तो पता चलेगा।
1: जी जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। साथियों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, और इस पर हमारे साथ हैं हमारे दो विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ढिकव और डॉक्टर विनीत गुप्ता। डॉक्टर विनीत, अभी आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पोजिशनल वर्टिगो, उसको कैसे कोई आइडेंटिफाई कर
2: सकता है? बेसिकली मैडम, पेशेंट को बस इतना ही जज करना है जो पोजिशनल वर्टिगो होता है उसमें कि क्या उसको चक्कर हर कोई मूवमेंट कर रहा है, या हमारे जो है पोजीशन चेंज कर रहा है, बेड पे लेट रहा है या लेट के बैठ रहा है या करवट बदल रहा है, उस टाइम पे चक्कर आ रहे हैं या चक्कर बढ़ जा रहे हैं, तो ये पोजिशनल वर्टिगो होता है
1: जी।
2: ये मतलब सिंपल सा है, अगर इतना वो जज कर लेते हैं तो उनको कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सीधे कि ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और बोले कि मुझे ऐसा हो रहा है, पोजीशन चेंज करने पे हो रहा है, पोजिशनल वर्टिगो टाइप का हो सकता है। और इसके लिए फिर एक टेस्ट होता है।
1: मैं पूछने वाली थी कि इसके लिए टेस्ट कौन कौन से हैं?
2: जी, एक तो जो केबल डेफिनेटिव की पोजिशन चेंज करने पर है, उसके लिए हम वीडियो निस्टेग्मोग्राफी एक टेस्ट रहता है, उसमें हम एक गोगल पहनाते हैं जो 3D गोगल्स आजकल मॉल्स एरा में आपने देखे होंगे, उस टाइप का गोगल सॉफ्टवेयर रहता है। टीवी पर हम उनके आईज के मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं।
1: अच्छा।
2: और उस आईज के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके हम ये जज करते हैं कि उसके एक कान में हमारे 3 बैलेंसिंग कैनाल होती हैं, तो हमारे किस ईयर में कौन सी बैलेंसिंग कैनाल में हमारा पार्टिकल पथरी बन गई है जो कि हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो असिस कर लिया हमने, तो उसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो कराते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है
1: जी।
2: इस पूरे प्रोसीजर में हार्डली 30-40 मिनट्स लगते हैं और 30-40 मिनट्स में पेशेंट एकदम ठीक हो सकता है
1: जी। डॉक्टर विकास, अगर न्यूरो की बात करें तो आप कौन कौन से टेस्ट सजेस्ट करेंगे?
3: जी देखिए, डिपेंड करता है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि चक्कर से ये मैनिफेस्ट करता है, जैसे मान लिया कोई 45 ईयर ओल्ड मेल चक्कर के साथ आता है, अदरवाइज फिट है, कार्डियक कोई कॉज नजर नहीं आता है, उसको कोई इस्कीमिक इवेंट नहीं नजर आती है, इस्कीमिक इवेंट से बोले कि हाथ पांव में कोई कमजोरी नहीं आई है, तो फिर हम बोलते हैं कि कम से कम एक ब्रेन स्कैन करवाइए या MR एंजियोग्राफी, अगर हमें लगे कि ये इस्कीमिक इवेंट है, यानी कि ब्लड फ्लो ब्रेन का कम होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये दो बेसिक टेस्ट हैं, अगर ये दोनों नॉर्मल है तो हम बोलते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन की स्क्रीनिंग भी आप करा लें, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑस्टियोफाइट हो या फिर जिसको बोलें कि PIVD हो सर्वाइकल एरिया का, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो जब इसको बोलें कि ब्रेन एंड नेक नॉर्मल है तो सेंट्रल कॉज ऑलमोस्ट रूल आउट हो जाता है, लेकिन फिर आते हैं फंक्शनल सेंट्रल कॉज, मतलब स्ट्रक्चरल सेंट्रल कॉज रूल आउट हो जाता है। जो फंक्शनल कॉज है उसमें बोले वेस्टिबुलर माइग्रेन एक कॉमन कॉज है, तो वेस्टिबुलर माइग्रेन अक्सर जैसे मैंने बताया चक्कर से मैनिफेस्ट करता है, उल्टी जी खराब होता है और हेडेक जो है कभी कभी होता है, सिर में भारीपन रहता है, ज्यादा नहीं होता है। इसका जो एसोसिएशन अक्सर हाइपरटेंशन के साथ होता है, तो BP चेक करें, और अगर मान लिया ब्लड प्रेशर है तो ECG और ECO दो बेसिक टेस्ट है, वो साथ में करवा लेते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट की बैटरी है। इसके अलावा सबसे पहले तो देखिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि ये कॉज जो है ये सेंट्रल है या पेरिफेरल है। तो अगर सेंट्रल कॉज है तो कुछ कुछ पॉइंटर्स है सेंट्रल कॉज के, कि एक तो वो एपिसोडिक नहीं होता है, वो जनरली मरीज खुद बोलता कॉन्टिन्यूस होता है, नहीं तो जो पेरिफेरल वर्टिगो होता है वो कुछ सेकेंड्स या मिनट तक होता है, उसके बाद में ठीक हो जाता है और ये चलता ही रहता है। फिर दूसरा ये है कि अगर स्ट्रेस रिलेटेड हो तो अक्सर ऐसा होता है कि मरीज जो है कोई हाई प्रेशर ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे गार्ड हैं या आर्मी पर्सनल हैं तो, या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उनको कभी कभी ऐसा होता है। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये प्रोबेबल कॉज है, तो डिपेंडिंग अपॉन के पॉइंटर कहाँ है, क्लिनिकल पॉइंटर कहाँ है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं।
1: इसके साथ ही सर मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह ये डेली रूटीन को प्रभावित करता है कुछ लोगों को, क्योंकि वॉमिटिंग आना ऐसे टाइम में या वॉमिटिंग जैसा फील होना, क्या कहेंगे आप?
3: जी देखिए, जोखिम तो काफी हो सकता है कि जो इस्कीमिक इवेंट्स हैं उसका पता नहीं चलता, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आज हो जाए, TIA जिसको बोलते हैं, और कुछ समय के बाद स्ट्रोक हो जाए, तो इससे बड़ा जोखिम क्या होगा, स्ट्रोक तो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट है, एक बात। अच्छा, दूसरा ऐसा होता है जैसे पार्किंसोनिज्म एक बीमारी है, एक होता है पार्किंसन डिजीज और एक होता है पार्किंसोनिज्म, जो अक्सर ऐसा होता है कि आपने मानसिक बीमारी के लिए दवाई लंबे समय से खाई है, तो उसके बाद में रिजिडिटी हो गई या पिल रोलिंग ट्रेमर हो गए, जैसे बोलें कि आपकी आपकी इंडेक्स फिंगर और आपका थंब जो अपने आप हिलने लग गए, तो आप जो चाय की ट्रे सुबह सुबह लेके जाते हैं तो वो आपके हाथ शेक करते हैं, तो फिर चलने में इनकोऑर्डिनेशन होता है। तो मेरे कहने का मतलब पार्किंसोनिज्म में भी ऐसा हो सकता है कि आपको चक्कर आए, तो आप ये देखिए कि ये अब सेंट्रल कॉज है लेकिन इसकी जो बोलें कि कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा होगी। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो अक्सर यंग लोगों को होता है, टीनेज में होता है, 20-22-25 साल पे होता
1: इसका
3: है
1: एज ग्रुप,
3: तो एज ग्रुप नॉर्मली वर्टिगो 40 के बाद होता है, लेकिन जो जिसको बोले कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस 20 और 40 के बीच में यंग लोगों की बीमारी है, और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो विटामिन डी कम होगा तो एमएस होने का खतरा थोड़ा बढ़ता है, तो ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें सेंट्रल जो कॉज है, ब्रेन से रिलेटेड जो कॉज होते हैं, क्योंकि वर्टिगो दो ही किस्म के होते हैं, कान से रिलेटेड या दिमाग से रिलेटेड, तो इसमें जो दिमाग से रिलेटेड है इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज काफी ज्यादा है, तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कॉज क्या हो सकता है और कॉज के हिसाब से ही फिर इलाज होगा। हम ये बोलते हैं देखिए कुछ जो जनरल प्रिकॉशन जो पहले बता चुके हैं तो मरीज को सबको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले होता है मैनेजमेंट के आपको ऐसी दवाइयां दी जाती हैं कि जो कि कान के सिग्नल जो ब्रेन में एक्सेसिवली जा रहे हैं या ब्रेन से जो सिग्नल कान की तरफ जाने चाहिए उसमें कोई अबनॉर्मैलिटी है तो उसको शांत किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, जो स्टडीनेस है पोस्चर की उसको एक किस्म से लाया जाए, तो दो चीजें तो करते हैं ताकि गिरने का खतरा कम हो जाए। और मरीज को बोलते हैं कि घर में बाथरूम में आप मैट लगा के रखिए, कि मैट अगर आप रखते हैं दोनों घर में और बाथरूम में तो अगर आप गिर भी गए गलती से तो आपको हेड इंजरी नहीं होगी।
1: जी डॉक्टर विनीत, आपसे जानना चाहूंगी कि कई केसेस में वर्टिगो अचानक से होता है, उसका क्या कारण होता है?
2: मैडम देखिए, अचानक से होने का एक हमारे ENT में होती है, ईयर से रिलेटेड कॉज होता है मीनियर्स डिसीज।
1: जी,
2: उसमें पेशेंट अचानक से चक्कर आएगा और गिर जाएगा। बस जो हमारी दो कंडीशन हैं जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से काफी मैच करती हैं।
1: जी,
2: एक तो मीनियर्स डिसीज,
1: हाँ,
2: और एक वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। मीनियर्स डिसीज में क्या रहता है, उसको मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं और वो 1 or 2 days रहेंगे, चक्कर आएंगे, उसमें वॉमिटिंग होगा और पेशेंट फोर्सफुल हिस्ट्री का कि मैं साहब चल रहा था और चलते चलते गिर गया और फिर मेरे को 5-10 मिनट में देखा तो मैं एकदम ठीक था। और उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑरा के सिम्टम, मतलब उसको पहले से वो जज कर सकता है कि हाँ मुझे जैसे सर भारी होना, कान में भारीपन होना, कान में शाएं शाएं की आवाज होना, और उसके साथ साथ उसको जैसे मल्टीपल एपिसोड्स होते जाएंगे तो उसके साथ उसको हियरिंग भी थोड़ा डिक्रीज होगा, तो ऑडियोमेट्री टेस्ट से हम उसको असेस कर लेते हैं कि हाँ इनका हियरिंग भी डिक्रीज हो रहा है, मल्टीपल एपिसोड हुए, तो मीनियर्स डिसीज है। सेम थोड़ा सा मिलता है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से मिलता है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, उसमें हमारी जो हियरिंग नर्व है उसमें इन्फेक्शन या स्वेलिंग आने की वजह से हमारे को जो है चक्कर आते हैं। उसमें और ब्रेन से होने वाले में दोनों में चीज सिमिलर होती है।

0: थोड़ा सा जो चलने की प्रॉब्लम है वो हमारे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस वाले पेशेंट को भी होती है,
1: जी
0: तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है टेस्ट के थ्रू कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है या नर्व का इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ है कान
1: जी
0: की।
1: इसके साथ साथ हमारे पास कई व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे
0: जी
1: हैं। निसार मास्टर हमें लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 73 साल है और जब ये सुबह उठते हैं तो इनको चक्कर आते हैं और दिन में लेट कर उठते हुए इनको चक्कर आते हैं, तो प्लीज बताएं कि ऐसा क्यों है।
0: ये मैडम ये बीपी बीपी का प्रॉब्लम है, पोजिशनल वर्टिगो
1: जिसके
0: है।
1: बारे में अभी
0: हाँ
1: आपने
0: जिसमें
1: हमें
0: अभी मैंने
1: बताया था।
0: बताया ये
1: जी
0: वही है।
1: और हमारे को एक और मैसेज आया है बलबीर जी का, वो लिख रहे हैं कि जब मैं थोड़ा टांगों के बल 5 मिनट बैठकर उठता हूं तो एकदम आंखों में अंधेरा आ जाता है आंखों के आगे। इनकी उम्र 70 वर्ष
0: ये
1: है,
0: मैडम
1: प्रणाम है।
0: पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है।
1: जी।
0: तो
1: डॉक्टर साहब एक और
0: जी जी
1: कॉलर पे हमारे साथ कॉल लाइन पे कॉलर है, जो ले लेते हैं इनका कॉल भी। हेलो
0: जी
2: हेलो।
1: जी
2: हाँ मैम, मेरा नाम रमेश है
1: जी
2: और मेरी वाइफ आरती है, 65 एज है। वो
1: जी
2: जब सुबह उठती है तो उनको थोड़ा चक्कर सा लगता है
1: जी
2: और उसके बाद थोड़ा हेडेक भी होता है, उसका वॉमिटिंग टेंडेंसी भी लगती है। और उसके बाद 5-6 घंटे रेस्ट कर लेती हैं तो काफी बेटर हो जाता है। डॉक्टर को दिखा के सारे टेस्ट वगैरह कराए थे, MRI वगैरह एक कराया था, सब चीज
1: जी
2: क्लियर है।
1: जी
2: तो मैं आपसे डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण हो सकता है और हम आगे कैसे बढ़े। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है। आप दोनों डॉक्टर्स को और पेशेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे कार्यक्रम करते रहे, बहुत ही जानकारी अच्छी मिल रही है।
1: जी
2: थैंक यू,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: बहुत
1: सर।
0: बहुत धन्यवाद। जो मुझे लगता है आपकी जो धर्म पत्नी है उनको
1: जी
0: पोजिशनल वर्टिगो है, क्योंकि वो सुबह उठती हैं तब उनको चक्कर आता है, 5-6 घंटे रहता है, फिर वो थोड़ा सा अडेप्टेशन आ जाता है उनकी बॉडी को, क्योंकि ये लंबे टाइम से चल रहा है। तो इसके लिए आप एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो कि चक्कर का इलाज करते हो, और इसके लिए एक टेस्ट रहता है वीडियो निस्टेग्मोग्राफी, वो टेस्ट कराएं और उसके बाद उनका एक एक्सरसाइज होगा और वो ठीक भी हो जाएंगी।
2: ओके ओके डॉक्टर साहब, थैंक
0: जी
2: यू वेरी मच।
0: जी
2: थैंक यू,
0: जी
2: थैंक यू वेरी
0: वेल वेल
1: सर। द्वारका दिल्ली से यशपाल हमें लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं, इसके
0: जी
1: लिए आपका धन्यवाद। ये लिख रहे हैं कि इनकी एक रिश्तेदार हैं जो जिनकी उम्र 40 साल है, वो लिख रहे हैं कि ये वर्टिगो है और ये इसकी मेडिसिन लेती हैं। क्या फिजियोथेरेपी इनको एडवाइस की जा सकती है और क्या ये फिजियोथेरेपी वर्टिगो में इनकी हेल्प करेगी?
3: देखिए डिपेंड करता है कि इनको क्या कॉज निकल के आता है। यंग पेशेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि सर्वाइकोजेनिक होता है, विमेन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं कि वो हो सकता है। तो एक प्लेन सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जिसको बोलते हैं एक्सरे नेक, AP और लेटरल व्यू या सर्वाइकल स्पाइन स्क्रीनिंग विद MRI ब्रेन, वो करा सकते हैं। तो दो ये टेस्ट हैं वो करवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनसे इनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले कॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो जब तक कॉज आइडेंटिफाई नहीं होगा तो एक किस्म से ट्रीटमेंट नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा।
1: जी। सर पुष्पेंद्र गर्ग हमें टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि इनकी माता जी की उम्र 56 वर्ष है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ फांस जैसा फंसा हो। इन्होंने ENT भोपाल में भी दिखाया है, एंडोस्कोपी करवाई है, उसमें आहार नाल में लाल लग रही है जो एसिडिटी लग रही है, तो गैस की दवा दी लेकिन आराम उनको नहीं मिला, क्या
0: जी
1: करें?
0: गैस की दवा जो आप सही बताया उन्होंने, इसको हम लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं,
1: जी
0: जिसमें कि साइलेंटली आपको फील नहीं होगा कि आपका एसिड ऊपर आ रहा है, बट पेट से एसिड ऊपर आता है और हमारे गले में जो है वो स्वेलिंग कर देता है। तो उसकी वजह से मरीज को गले में ऐसा लगता है मेरे गले में कुछ चुभ रहा है या कुछ फंसा हुआ है। तो एक तो इनको खाने पीने में बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी होंगी, तेल चिकनाई का खाना बंद करना होगा और खाने के बाद 2 घंटे तक लेटना नहीं है। खाना जो है थोड़ा हल्का खाना है, स्मॉल और मल्टीपल मील थोड़ा थोड़ा खाएं, मगर दिन में ज्यादा बार ही खाएं। और चाट पकौड़े, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, इन सब का परहेज भी करना होगा और दवाई भी रेगुलर इनको 1.5 से 2 महीने के लगभग खानी होंगी, तब जाकर के ये ठीक रहेंगे।
1: जी इसके साथ साथ सर पूजा का दिल्ली से मैसेज आया है कि उन्हें लेटने पर राइट साइड में चक्कर आते हैं, इसका रीजन क्या है?
0: इसका रीजन जो है मैडम, आपके जो हमारे ईयर में जो बैलेंसिंग कैनाल्स हैं उसमें किसी एक कैनाल में आपके पार्टिकल मतलब स्टोन फॉर्मेशन हो गया है, तो उसकी वजह से जब हम करवट चेंज करते हैं तो वो पार्टिकल जो है हमारे जाकर के बैलेंसिंग ऑर्गन को स्ट्राइक करता है और उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहा है।
1: सर एक और मैसेज है हमारा, हमें हमारे पास दिल्ली से गायत्री का, वो लिख रही है कि जब ये सुबह उठती हैं तो उन्हें चक्कर और सिर में भारीपन लगता है, ऐसा रोज नहीं कभी कभी होता है, और चलते हुए नीचे या ऊपर देखने पर चक्कर जैसा महसूस होता है, बीपी शुगर चेक कराया, दोनों समस्या नहीं है।
0: जी मैडम, अब इसमें बेसिकली सुबह सो के उठने के बाद अगर तुरंत हो रहा है तो कई बार हमारा वो पोस्चरल हाइपोटेंशन भी हो सकता है कि हम सिटिंग से जब स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर है वो टाइमिंग ड्रॉप करता है, तो उसके लिए एक तो अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें
1: जी,
0: पानी खूब पिए और अपना प्रॉपर स्लीप लें। अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको वही ENT स्पेशलिस्ट, वर्टिगो स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए।
1: सर आपने स्लीप की बात की, तो क्या रात में देर से सोने पर ऐसा प्रॉब्लम होता है ये वर्टिगो?
0: हाँ मैडम,
1: सुबह उठने पर या
0: अगर स्लीप प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग तो सब नॉर्मल ही रहेगा, तो कई बारी चक्कर को अच्छे से पेशेंट जो है डिफाइन भी नहीं कर पाता कि मुझे चक्कर है। कई बारी सर भारी को भी पेशेंट ये बोलता है मुझे चक्कर है, कई बारी जनरलाइज बॉडी वीकनेस भी होती है तो भी पेशेंट बोलता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो एक तो चक्कर की डेफिनेशन पहले तो जब पेशेंट दिखाता है तो उससे हम ये पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, गोल गोल घूमा लगता है या आप गोल गोल घूमते हो या चीजें गोल गोल घूमी या आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है, तो इन चीजों में डिफ्रेंशिएटेड करके ही हम पता कर पाते हैं कि उसको एक्चुअल में चक्कर की प्रॉब्लम है कि नहीं है।
1: जी सर, इसी से जुड़ा सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि जो वर्टिगो की समस्या है क्या ये खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है, और जीवन शैली में सुधार और खान पान में अगर ध्यान दें तो कितना काम कर सकते हैं?
0: जी मैडम, ये चक्कर की जो बीपी की प्रॉब्लम है पोजिशनल वर्टिगो, ये यूजली फीमेल्स में होती है, मतलब मोर कॉमन है फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में एक तो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी रहती है जल्दी, 45 के बाद में सभी को कैल्शियम डिप्लीशन होता ही है, और विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट बहुत होती है, अगर आप सनलाइट नहीं ले रहे हैं तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो वो लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड हो गया, और आपको साथ में जो है कैल्शियम भी अच्छा चाहिए, हाइड्रेशन भी मेंटेन करना, ये तीन चीजें तो बहुत जरूरी हैं। और कई बारी हम ध्यान नहीं देते, माइनर हेड ट्रॉमा भी हमारे को ये पोजिशनल वर्टिगो करा सकता है, पार्टिकल नॉर्मल जगह से इस जगह पर कैनाल में ला करके बैलेंसिंग कैनाल में शिफ्ट कर सकता है, ट्रॉमा भी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है।
1: कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें होती है जिनसे ये होता है या ये सिर्फ मिथ है?
3: इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं, काफी स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आप नमक से सैचुरेटेड डाइट को लेते रहते हैं बहुत लंबे समय तक या जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो आपको मीनियस डिजीज का खतरा ज्यादा होता है, या फिर ये कि आपको टिनिटस हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, या आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं और इतना ज्यादा वजन उठाते हैं जो कि आपकी नेक और शोल्डर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको क्रॉनिक डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज का खतरा भी रहता है। तो ये दो लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं ये वर्टिगो के लिए सीधी जिम्मेवार है, ऐसा समझा जा सकता है। इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बोले तो वर्टिगो करेगा, लेकिन हाँ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर जो कि 4-6 घंटे तो आजकल नॉर्मल है ही, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है 12 घंटे 16-16 घंटे आप स्क्रीन देख रहे हो तो उसके बाद में जब आप
1: फोन लैपटॉप
3: डिजिटल दुनिया से जब आप बाहर निकलते हो और आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो भी आपको स्पिनिंग सेंसेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोलना बड़ा जरूरी है, एक चीज होता है वर्टिगो, दूसरा होता है डिजीनेस, तो दोनों अलग अलग तकलीफ है और अलग अलग बीमारियों का संकेत देती हैं। वर्टिगो का मतलब है कि आपको चक्कर आ रहा है, या तो आप घूम रहे हैं या आपके आसपास की दुनिया घूम रही है, घूम कोई नहीं रहा है लेकिन सेंसेशन है। डिजीनेस का मतलब है कि आप अनस्टडी हो गए हैं। अब अनस्टडीनेस ये भी हो सकता है क्योंकि आपका सिर घूम रहा है, आप नहीं घूम रहे आपका सिर घूम रहा है, लेकिन सिर घूमने की वजह से आप अनस्टडी हो गए हैं, ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डिजीनेस जो है वो वर्टिगो का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। लेकिन हाँ, जब वर्टिगो डिजीनेस में कन्वर्ट हो जाता है तो आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोलना बड़ा जरूरी है कि जो ऑरा होता है, जैसे मीनियर्स में ऑरा होता है, तो मीनियर्स का जो ऑरा है वो एपिलेप्सी के ऑरा जैसा हो सकता है, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की बीमारी का और दोनों एक किस्म से एक जैसे हो सकते हैं, जैसे आंखों के सामने तारे टिमटिमाना या सिर में एकदम से घुमावदार सेंसेशन पैदा होना या फिर मूड खराब होना, उल्टी होना, जी मितलाना या बेहोशी जैसी सेंसेशन होना, अल्टीमेटली चाहे वर्टिगो हो या डिजीनेस हो या दोनों एक साथ हो, तो एक थोरो इवैल्यूएशन तो चाहिए, उसके बाद ही पता चलता है कि कॉज क्या है।
1: सर, स्ट्रेस कितना इसके लिए जिम्मेदार है?
3: वन ऑफ द कॉमन कॉज है, ये अंडररेटेड है। दुनिया में 80 करोड़ लोगों को वर्टिगो।

0: और 30 से 40% जनसंख्या दुनिया की ऐसी है जिन्होंने वर्टिगो एक्सपीरियंस किया है। ऐसा माना जाता है कि कभी ना कभी किसी न किसी को वर्टिगो का एक एपिसोड तो होता ही है। ये इतनी कॉमन आम बीमारी है। तो अब बात आती है कि स्ट्रेस तो यूबिक्विटस है, हम सबको स्ट्रेस होता है, जब तक थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो यू स्ट्रेस है तो वो तो सही है, लेकिन जब ये एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हो जाता है तो इनएस्केपेबल हो जाता है, तो तब ऐसा हो सकता है कि एंग्जाइटी जनरेट हो और एंग्जाइटी की वजह से आपको स्पिनिंग सेंसेशन।
1: आप दोनों से जानना चाहूंगे कि क्या ये वर्टिगो जड़ से खत्म हो सकता है?
2: डिपेंड करता है मैडम कारण क्या है। अगर वो ट्रीटेबल कॉज है, सेंट्रल रीजन नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट के मैं बोलता हूँ वर्टिगो जड़ से ठीक हो सकते हैं। अब जैसे हमारा ये पोजिशनल वाला है, इसमें पार्टिकल बार बार फॉर्मेशन होने की कई बारी टेंडेंसी होती है, तो उसको आप विटामिन डी, कैल्शियम एनरिच रखें, कैल्शियम लेते रहें और मैग्नीशियम भी लेते रहें, मैग्नीशियम का भी रोल आ गया है आजकल, और अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। तो ये बेसिक अपना रखेंगे अच्छा नॉर्मल, इस पर ख्याल रखेंगे हाइजीन पर, तो आपके जो इंसिडेंसेस हैं, जो होने की टेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी।
0: जी, प्रिवेंशन पॉसिबल है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा चाय कॉफी ना पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, जंक फूड से बचें, तो मिडल ईयर का प्रेशर भी कम रहेगा। और इसके अलावा आपको जो हाइपरटेंशन होने की टेंडेंसी है तो वो टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। तो एक किस्म से टू सम एक्सटेंट प्रिवेंशन पॉसिबल है, लेकिन हाँ, ये करके इसको बीमारी को मिटिगेट किया जा सकता है, इसको काबू में किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि क्या ये वंशानुगत है और गर्भवती महिलाओं में ये समस्या आती है तो इसका कारण क्या हो सकता है?
0: पहले सवाल का जवाब तो है ना, मतलब ये जेनेटिक नहीं है। जहां तक प्रेग्नेंट वुमेन की बात है, देखिए प्रेग्नेंट वुमेन में वर्टिगो का कोर्स सेम होता है एज दैट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकते हैं कि अगर चक्कर खा के गिर गए तो दो नुकसान होंगे, बेबी को और मदर को। सो एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। फिर दूसरा, क्योंकि प्रेगनेंसी में पोस्चर भी चेंज होता है, क्योंकि देखिए वजन बढ़ता है, 9-10 किलो तक वजन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो पोस्चर में चेंज आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का चांस ज्यादा होता है, तो वर्टिगो की संभावना भी आम लेडी से थोड़ी ज्यादा होती
1: है।
2: जी मैडम, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में और भी ज्यादा टेंडेंसी होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी की, तो चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। तो जैसा सर ने बोला कि ख्याल तो रखना ही है और डबल रिस्क भी है
1: जी।
2: तो इसलिए आपको अपना डॉक्टर से, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे कंसल्ट करते हुए कैल्शियम वगैरह अपना टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। वो उनको ऐसा नहीं है कि कैल्शियम दे रहे हैं तो डॉक्टर बेकार में दे रहे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है।
1: तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि वर्टिगो की समस्या ना हो, इसके लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम सेफ रह सके?
2: मैडम, एक तो पहले अपना जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहे, और आज की तारीख में थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल इंजरीज भी हो रही है हमारे मोबाइल अब्यूज की वजह से, ओवर यूज की वजह से, तो उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि उससे आजकल टिनिटस और डिक्रीज हियरिंग भी हो रहा है। और बाकी जैसा मैंने बोला, विटामिन डी, हाइड्रेशन, और सर ने भी जैसे अभी बोला था कि एक्सेसिव एक्सरसाइज, जिसकी वजह से हमारे नेक में डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। सारी चीजें आपको अपने एक एक्सटेंट तक, एक लिमिट में ही अच्छी रहती है, तो वही करना चाहिए।
0: हेल्दी लाइफ स्टाइल, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। सो हेल्दी लाइफ स्टाइल से तो ये जो इंजरी की संभावना कम हो जाएगी और जो बाकी बीमारियां हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उनका चांस कम हो जाएगा। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से नर्व्स मजबूत होती हैं, जैसे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है तो उसकी संभावना कम हो जाएगी, या जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है उसकी संभावना कम हो जाएगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए इन जनरल जरूरी है।
1: हाइड्रेट रखें,
0: हाइड्रेट रखें, बिल्कुल, गर्मी में बहुत आवश्यक।
1: जी जी, और उसके साथ फोन से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, बहुत जरूरी है।
0: हाँ, ये हमने कार्यक्रम किया था डिजिटल डिमेंशिया में, तो उसमें एक टीनेजर को आकाशवाणी ने बुलाया था, तो उसने काफी अच्छा बोला कि देखो, मेरी उम्र के जो बच्चे हैं जो मोबाइल में घुसे रहते हैं, दुनिया जो मोबाइल से बाहर है, दुनिया पार्क में है, दुनिया साइकिलिंग में, स्विमिंग में।
1: बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये था हमारा आज का विषय जो जुड़ा था वर्टिगो सिम्टम कॉजेज एंड क्योर्स है, और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी हमारे विशेषज्ञों ने, डॉक्टर विकास ढिकव जो है न्यूरोसाइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर विनीत गुप्ता जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, आप दोनों यहां आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया। नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में दान के दुरुपयोग के आरोप के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बसेत्सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदुनियाम के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। उन्होंने विभिन्न संबंधित टीमों के साथ चल रहे कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। अमरीका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमरीका के राजकोष विभाग ने बताया है कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। ये कार्रवाई अमरीका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अंतरिम समझौते की समय सीमा के अनुरूप है। बैंकिंग लेन-देन, बीमा और समुद्री परिवहन सहित अन्य संबंधित सेवाओं पर प्रतिबंधों से राहत दी गई है। अमेरिका में बिक्री और वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर ईरान से तेल के आयात की भी अनुमति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने

आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड देख सकते हैं। NTA के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक अभूतपूर्व खेल क्रांति का साक्षी बन रहा है। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन को 2-1 से मात दी। न्यूयॉर्क में ग्रुप आई मुकाबले में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट में जगह पक्की की। फ्रांस ने ग्रुप आई मैच में इराक को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी हां, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का आकाशवाणी रेनबो पर, जो पहुंचता है दिल से दिल तक और दिल से दिल तक के सफर पर आपके साथ। मैं हूं आपका हम सफर दोस्त सत्य। प्रोग्राम अल्फा जेन लेकर, अल्फा जेन में आज करियर पाथवे के तहत आपको सुनवाते हैं एक खास बातचीत। और यह खास बातचीत है द वर्ल्ड्स यंगेस्ट हिस्टोरियन यशवर्धन सिंह के साथ। साक्षात्कार करता है कुसुम लता।
1: एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर अल्फा जेन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा के बारे में जिन्होंने कम आयु में ही इतिहास, शिक्षा और युवा नेतृत्व के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे नन्हे इतिहासकार, जी हां, दुनिया के सबसे नन्हे इतिहासकार के रूप में सम्मानित हजारों विद्यार्थियों को प्रेरित किया और मार्गदर्शित भी किया। और इस युवा व्यक्तित्व का नाम है यशवर्धन सिंह। यशवर्धन जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं।
2: मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी उम्र 15 वर्ष है और साथ ही में आप लोग मुझे दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार के रूप में जानते हैं। साथ ही में मैं यूपीएससी सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इतिहास, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजस्व भी पढ़ा रहा हूँ। और साथ ही में कानपुर विश्वविद्यालय में एज ए गेस्ट लेक्चरर भी छात्रों को लॉ डिपार्टमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा रहा हूँ।
1: यशवर्धन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतिहास जैसे विषय में आपकी बचपन से ही इतनी ज्यादा रुचि कैसे विकसित हुई?
2: दरअसल 2017 की बात है, मेरी मदर जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी और उस समय मैं देखता था मम्मा तैयारी कर रही है, मम्मा पढ़ाई कर रही है और क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और फिर मम्मा ने बताना शुरू किया कि यश देखो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री का ये मराठास में भी चार सरदार थे, अच्छा। सिंधिया से, भोसले से, होलकर से, गायकवाड़ से। मम्मा ने धीरे धीरे मुझे इस फील्ड पे एक्सपोजर दिया और धीमे धीमे करके मेरा इसी फील्ड में इंटरेस्ट जागने लगा, जिसको आज के समय में हम लोग क्यूरियोसिटी कहते हैं।
1: तो हम आपके जीवन की सबसे बड़ी जो प्रेरणा रही किसको मान सकते हैं?
2: बिकॉज मेरा स्पेसिफिक क्षेत्र में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विषयों के बारे में मुझे जानने की हमेशा रुचि रहती है और इसका एक बहुत बड़ा रोल मेरे क्यूरियोसिटी को भी जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल फिलोसफी हो, हिस्ट्री हो, लॉ हो, क्योंकि मुझे इन सारी फील्ड से एक्सपोजर रहा है और मैंने इस क्षेत्र में पढ़ाई की है। इसी कारण मुझे हर एक फील्ड में जानने का, लोगों को समझने का और जो महान लोग रहे हर एक फील्ड में जिन्होंने हर एक क्षेत्र में काम किया, उस सब के बारे में जानने का मौका मिला। तो इसलिए तो सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही रहे, क्योंकि मैं इन सारी फील्ड से कभी एक्सपोजर पा ही नहीं पाता अगर मेरे मदर और फादर अगर मुझे अलाउ ही नहीं करते कि मैं इनसे एक्सपोजर करूं या फिर इनसे एक गुफ्तगू करूं।
1: मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि जो भी आपके व्यक्तित्व का निर्माण है उसमें आपके परिवार का पूरा योगदान रहा है, जिसमें आपके माता पिता भी हैं और भी जो परिवार में सदस्य होंगे।

0: गई उगांडा। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम कुछ बनते हैं तो हमारे पीछे किसी ना किसी की सपोर्ट जरूर रहती है ना।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो यशवर्धन, आप हमें ये बताएं कि मात्र 11 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे नन्हे इतिहासकार के रूप में आपको सम्मानित किया गया, तो आपका अनुभव कैसा रहा?
1: मैम, अगर उसको एक शब्द में कहा जाए तो फिर अनुभव बहुत ही अच्छा रहा।
0: क्या बात है।
1: और वो तो मुझे खुद भी ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। मैं 9 वर्ष का था या 10 वर्ष का था, और अगर मुझसे अभी कोई पूछता कि आपको पता है कि आप 5 साल में किधर होंगे, तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होता। पर ये प्रभु की एक दया है, और इट्स द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ द लॉर्ड मैं जो भी हूँ आज के समय में जीवन में। और ये उस समय की बात है जब मैं 11 वर्ष का था। उस समय हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नाम के एक संस्था ने, जो कि लंदन में बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमें अप्रोच किया कि सर, हम यशवर्धन सिंह को आफ्टर ऑब्वियसली उनकी सारी फॉर्मेलिटीज एंड हिज एग्जामिनेशंस, हम आपको वर्ल्ड यंगेस्ट हिस्टोरियन का टाइटल कन्फर करना चाहते हैं। उसी समय एग्जामिनेशंस हुए और फिर मुझे फाइनली ये टाइटल अवार्ड दिया गया, वर्ल्ड यंगेस्ट हिस्टोरियन इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का। और जैसा कि मैंने बताया, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा।
0: बिल्कुल, रहना भी चाहिए, और किसी को भी बहुत खुशी होगी जब ये सम्मान मिलेगा, और कोई भी सम्मान हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपको ये सम्मान मिला, मतलब आपने अपने बारे में तो बता दिया, लेकिन आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्हें भी कुछ मतलब अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा कि हमारे बच्चे को एक इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, उनके बारे में बताएं आप।
1: मेरे परिवार की ऑब्वियसली जैसे कि मेरी प्रतिक्रिया थी कि बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे परिवार से एक बच्चे ने एक नया माइलस्टोन सेट किया है। ऑब्वियसली उनके लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट था। और उसके बाद से जो भी मैंने अपने क्षेत्रों में किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या इतिहास के क्षेत्र में हो, और जाहिर सी बात है उनको हमेशा बहुत खुशी होती है और वो हमेशा प्राउड फील करते हैं।
0: वाकई खुशी की तो बात ही है। यशवर्धन, उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा IQ में 129 आपका स्कोर रहा, तो इस परीक्षण के बाद कक्षा 6 से सीधे कक्षा 9 में आपको प्रवेश दिया गया, तो ये आपके लिए मतलब कैसा एक्सपीरियंस था?
1: मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये भी मेरे लिए, क्योंकि इस बात सन 2024 की है, क्योंकि मेरी उस समय सिस्टर 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में जा रही थी, और मैं 6th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड में जा रहा था। तो उस समय की बात है कि जब दीदी का सारा स्टडी मटेरियल आया, तो मैंने उसको भी, जाहिर सी बात है, क्यूरियोसिटी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मुझे हमेशा नई चीजें जानने का थोड़ा शौक था, तो मैंने गो थ्रू किया एंड आई वाज लाइक, यार आई ऑलरेडी नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर मैंने ये जो स्टार्टिंग के जो ये आगे के 2 साल है, इसमें अगर मैंने कुछ काम किया या फिर मैंने तब भी उसकी पढ़ाई की, तो फिर मेरे लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से एक टाइम वेस्ट ही होगा, और जो टाइम है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। उसी समय मैंने पापा को कहा कि पापा, आपको जैसा लगे आप बताइए। माय डैड वाज लाइक कि यश, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, बट डू इट एट योर ओन रिस्क, खुद से करो, और अगर पक्का श्योर है तभी करो। आगे चल के फिर प्रदेश सरकार, उसने माध्यमिक शिक्षा परिषद को ऑर्डर दिया। उसके बाद फिर मनोविज्ञान शाला, जो कि कानपुर की है, मंडली मनोविज्ञान शाला, उसमें मेरी IQ जांच भी हुई, जिसमें मेरा IQ स्कोर, जैसा कि आपने बताया, 129 आया, जो कि एक सुपीरियर कैटेगरी के अंडर आता है। और उसके उपरांत मुझे कक्षा 6 से कक्षा 9 में सीधा प्रमोशन दिया गया।
0: तो आपके जो सहपाठी होंगे कक्षा 9 में, तो उनको एकदम से कैसा लगा होगा कि सीधे कक्षा 6 का विद्यार्थी हमारे साथ कक्षा 9 में आ गया है ना?
1: उनको कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। उनको थोड़ा लगता था कि यश, आप तो मेरे से इतने छोटे हो, आप कैसे तो कई बार थोड़ा सा वो भी लगता है, उनको भी ये फील होता था कि ये हमसे बहुत आगे। और उनको भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कभी कहा हो कि तुम पीछे हो, तुम छोटे हो, तुम ऐसा करो। सब बहुत अच्छा सपोर्टिव माहौल रहा, और ये तो मैं ईश्वर को ही धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मुझे कभी ऐसी कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आने दी मेरे एकेडमिक फील्ड में, मेरे शैक्षिक क्षेत्र में। तो उनका भी रिएक्शन बहुत अच्छा रहा।
0: चलिए यशवर्धन, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि सिर्फ 14 वर्ष की आयु में क्लैट 2026 और एलेट 2026 जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण की, आपने तो ये तैयारी आपने कैसे की?
1: ये पिछले 2 साल की जो जर्नी रही है, बिकॉज क्लैट और एलेट 2026 के लिए मैं दिसंबर में ही बैठा था, और ये जो पिछले 2 साल की जर्नी रही है, ये मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही ज्यादा एनरिचिंग जर्नी रही है, एक रोलर कोस्टर राइड रही है, कि बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही थी, बहुत एक्सपोजर मिल रहा था, कई सारी जो गलतियां मेरे से हो रही, बिकॉज कोई इंसान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, सिवाय ईश्वर के।
0: बिल्कुल ठीक है आपने।
1: तो एक इंसान केवल और केवल परफेक्शन की राह पे चल सकता है, कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। और अगर आपको परफेक्शन की राह पे चलना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी गलतियां कर रहे हो उससे अगर आप सुधर रहे हो, बिकॉज अगर आप गलतियों को ऐसे लेके चलोगे कि हाँ मेरे से गलती हुई, बहुत बुरा हुआ, और आप कभी उसे उभरे ही नहीं, बिकॉज जैसा कि स्क्रिप्चर्स में भी कहा है, अ राइटियस मैन में फॉल 7 टाइम्स बट ही राइजेस वंस अगेन।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर जो एक अच्छा व्यक्ति होता है जो चरित्र से, जो एक अपनी सोच से, एक राइटियस होता है, उच्चतम सोच का होता है, एक विजडम के साथ वाला व्यक्ति होता है, एक वाइज इंसान होता है, वो चाहे वो कितना भी गिरे वो वापस उठ के खड़ा जरूर होगा। और ये तो कोई ऐसा भी नहीं कि किसी लेखक ने कहा हो, ये तो धार्मिक स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। तो

0: बात है कि दोनों की ही पहली लिस्ट में मेरा नाम था,
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: कुछ इसी प्रकार से मेरा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जिसको हम लोग आज के समय में NLSIU जानते हैं, और साथ ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली यानी NLUD, ये दोनों ही अलॉट हो रहे थे, जो कि नंबर 1 और नंबर 2 लॉ इंस्टीट्यूट है इंडिया में, लॉ इंस्टीट्यूशन है। और आखिर में बहुत एक कंफ्यूजन था, एक डिलेमा में मैं फंस गया था कि यार क्या चूज करें, किसको ऑप्ट करें, और फाइनली जाके मैंने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर को ऑप्ट किया, जो कि रैंक 1 है, जिसको हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट के भी नाम से जाना जाता है हमारे देश में। और फाइनली अभी कुछ चंद दिनों की बात है कि मैं बैंगलोर में हूँ।
1: बहुत अच्छा लग रहा है यश हमें जान के कि आप उपलब्धियों के एक से एक नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, और शायद ये कभी रुकेंगे भी नहीं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे, क्योंकि जो उपलब्धियां आपकी अब तक रही उनको देखकर तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि अब रुकेंगे नहीं कहीं भी, है ना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: तो इतनी छोटी सी आयु में, मतलब 14 वर्ष की आयु में ही आप IAS PCS अभ्यर्थियों को, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कोचिंग दे रहे हैं, उनको आप पढ़ा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई?
0: दरअसल ये सन 2022 की बात है, जब कानपुर में स्थित उत्तम करियर इंस्टीट्यूट नाम से एक कोचिंग संस्थान है, उसके जो डायरेक्टर है माननीय रुनेन्द्र सोनी जी, उन्होंने मेरे फादर को अप्रोच किया कि सर मैं चाहता हूँ कि यश हमारे संस्थान में आके बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। और उस समय की बात है कि टीचिंग में और कई सारे सामाजिक और राजनीतिक और जो भी देश दुनिया में जो खबरें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज, उन सबके ऊपर जियोपॉलिटिकल डिस्कोर्स करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और इसी वजह से पब्लिक स्पीकिंग का भी मुझे बहुत शौक था। तो इसी तरीके से फिर मैं टीचिंग में भी आया, मेरा टीचिंग में भी एक्सपोजर हुआ, और धीमे धीमे करके मैंने पढ़ाना शुरू किया। और स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि यार थोड़ा वियर्ड तो लगेगा, पर ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है और इट्स ग्रेस एंड मर्सी ऑफ द लॉर्ड कि मुझे कभी कोई दिक्कत इस क्षेत्र में भी नहीं हुई।
1: कभी आएगी भी नहीं आपको, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है और जो आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है हर क्षेत्र में, तो आपको कभी समस्या आएगी भी नहीं, ऐसा हमारा मानना है। IPS लेवल पर जो तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ाना, मतलब उनको आपको जानकारी देना, आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं उनके सामने, उम्र के तकाजे से अगर हम देखें तो उनको कैसा लगता हो? कुछ आपके ऊपर कोई कमेंट या कॉम्प्लीमेंट कुछ आपको मिला हो जो आपको ऐसा अनुभव रहा हो, या किसी ने कुछ आपको कहा हो कि मतलब आप कैसे हमें पढ़ाएंगे, आप तो इतने छोटे हैं, मतलब इस तरह की कोई बात, एक अनुभव आप अपना साझा कीजिए इस विषय पर।
0: मैम जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत वियर्ड लगा था, बहुत अजीब लगा था कि मैम इसके आगे क्या होगा और क्या मैं एक्चुअली कुछ कर पाऊंगा, क्या ऐसे मतलब अपना परफॉर्मेंस अपना कर पाऊंगा कि नहीं। बट वंस अगेन इट्स ग्रेस एंड मर्सी ऑफ द लॉर्ड, और ये एक बहुत बड़ा असर है कि मुझे कभी कोई इस क्षेत्र में प्रॉब्लम नहीं आई। और एकदम स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स को कभी कभी ऐसा लगता है ये हमें कैसे पढ़ाएगा, तो मेरा भी उन लोगों को बस एक यही एक कॉमेंट होता था कि एक बार सेशन अटेंड करके देखो, एक बार देखो तो कैसे होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई।
1: मतलब ईश्वर का आशीर्वाद तो रहा ही, और आपके जो पेरेंट्स हैं माता पिता उनका भी बहुत योगदान रहा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि माता जी आपकी टीचर हैं और वो भी PCS की तैयारी कर रही थी और पिताजी ने भी आपको योगदान दिया। तो यशवर्धन आप ये बताइए कि जैसे कि आज कहते हैं कि डिजिटल युग है और इसमें विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई जो है सोशल मीडिया पर बहुत कंटेंट है, तो आप संतुलन कैसे बनाते हो इन सब चीजों के बीच में, कैसे समझाते हो विद्यार्थियों, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है वो तो जरूरी है ही, लेकिन ऑफलाइन भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, जानकारी लेना जरूरी है, तो कैसे आप उनको ये चीज बताते हैं, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं?
0: जैसा कि हम लोगों ने बोला कि जो डिजिटल क्षेत्र है वो एक क्रांति है, वो डिजिटल क्रांति हम लोग उसको एक कारण से कहते हैं। जैसा कि आज से अगर 30 साल पहले अगर हम लोग जाए तो इट वॉज नथिंग लाइक दैट, बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी, एक जगह से एक खबर पहुंचने दूसरे जगह पे बहुत समय लग जाता। और आज के समय में जैसा कि मैंने इस पे एक रिसर्च पेपर पे भी वर्क किया था अभी से कुछ समय पहले, वो मेनली साइबर क्राइम के हम लोग अगर ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स जो है जुरिडिक्शन और एनफोर्समेंट के लिए, उस क्षेत्र में मैंने रिफॉर्म्स लाने के लिए अपने एक मित्र के साथ एक रिसर्च पेपर पे वर्क किया था।
1: अच्छा।
0: और उसको भी मैंने अभी कुछ समय पहले कानपुर विश्वविद्यालय में प्रेजेंट भी किया एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो उस क्षेत्र में भी मैंने ये बात की थी कि साइबर स्पेस जो है वो ट्रांसेंड करता है, साइबर स्पेस एट इट्स कोर ट्रांसेंड्स फिजिकल बाउंड्रीज, और जितनी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस है, वेदर इट बी इंटरपोल जो स्टेट की अथॉरिटीज है, यूरोपोल या कोई भी और अथॉरिटी हो, जो साइबर स्पेस है और जो साइबर क्राइम है वो उसको ट्रांसेंड करता है, या फिर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए हमारे बॉर्डर के पार ऑपरेट करने में ऑब्वियसली दिक्कत आएंगी, चाहे वो कितना भी अच्छा हमारा मित्र राष्ट्र हो, और उसको हमेशा दिक्कतें आती हैं बाहर के बॉर्डर पे।
1: बिल्कुल।
0: पर क्या साइबर क्रिमिनल्स को दिक्कतें आती हैं? वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चाहे भारत में बैठे, चाहे वो चीन में बैठे, चाहे वो जापान में बैठे, उनके लिए साइबर स्पेस साइबर स्पेस है, उनको अपने कंप्यूटर से लॉग इन करना है और जो भी उनको अपना काम अंजाम करना है वो अपना क्राइम अंजाम करते हैं।

0: इस तरीके से हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ऑल्दो साइबर स्पेस अलाउ करता है कि कोई बाउंड्रीज ना रहे इस दुनिया में. अभी कुछ समय पहले ही मैं एक ऑनरेबल हमारे एक प्रोफेसर साहब रहे, मेरे उनसे भी एक डिस्कोर्स हो रहा था, उसमें भी उन्होंने बोला कि आज के समय में जो नए छात्र आ रहे हैं आप असाइनमेंट दो उनको, वो AI से करा के आते हैं.
1: बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है.
0: और AI से अभी अगर आप करवाते हो तो उसका एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर पे आप डालते हो और वो टेक्स्ट जो होता है वो ह्यूमनाइज हो जाता है. तो यानी जो AI डिटेक्शन है वो AI उसको डिटेक्ट कभी कर ही नहीं पाता है. और आज के समय में छात्र बहुत बढ़ चढ़ के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने असाइनमेंट्स में. इस वजह से जो हम लोग ओरिजिनल थॉट की बात करते थे कि जो छात्र अपने दिमाग में कोई एक नई चीज सोच रहे हैं, क्रिएटिविटी ला रहे हैं, वो क्रिएटिविटी धीमे धीमे करके मरती जा रही
1: है, रुक गई है वो कहीं ना कहीं, है ना.
0: बिल्कुल. और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ नया काम करना है, ऑल्दो आई रिस्पेक्ट, आई हैव गॉट एन अटमोस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डिजिटल वर्ल्ड एंड आई लव टेक्नोलॉजी, आई पर्सनली यूज टेक्नोलॉजी ऑल द टाइम, आई वर्क ऑन माय मैकबुक, आई वर्क ऑन एवरीथिंग, मेरा सारा का सारा काम मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे होता है. उसी प्रकार से हम लोग देखें कि एक तरफ जहाँ पे हम लोगों को कई सारे ऑप्शंस प्रदान भी किए गए, कई सारे इसके नुकसान भी है, जैसा कि हम लोगों को तमाम सुसाइड्स और तमाम केसेस रोज हमारे पास आते हैं, इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है.
1: और कहीं ना कहीं वो जो एक नई जानकारी है एक उसमें रुकावट आ रही है.
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने क्यास लगाकर जो नई नई एक अपने दिमाग में एक क्यास बनाता है, सरवाइव करता है उस क्यास को लेकर, और नई टेक्नोलॉजी इर्जाद करता है, या कहें कि नए नए परीक्षण आते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं इसमें रुकावट आ गई है.
0: बिल्कुल.
1: तो मैं वही एक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग प्वाइंट इतिहास को लेकर आपसे पूछूंगी कि इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है.
0: देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं 1857 की क्रांति पे भी क्षेत्र में काम किया है मैंने, और रिसर्च का काफी क्षेत्र में मैंने काम किया कानपुर में. और मुझे जो एक चीज देखने को मिली अपनी पर्सनल रिसर्च के दौरान वो ये थी कि कई सारे स्कूल ऑफ हिस्ट्रीज हैं, जिसको स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी से हम लोग कहते हैं. एक होता है नेशनल स्कूल, जो कि एक वैसे तो उसको कंसिडर किया जाता है एक प्लेन पर्सपेक्टिव से कि वो एक राइट विंग व्यू है. फिर एक आता है सब आर्डन पर्सपेक्टिव, फिर आता है आपका लिबरल पर्सपेक्टिव. इसी तरीके से फिर एक कॉलोनियल भी आ जाता है, ओरिएंटल स्कूल है. तो कई सारे स्कूल्स ऑफ हिस्टोग्राफी है. कई बार होता क्या है कि एक छात्र जो होता है वो उस आइडिया से अपने टीचर से, किताबों से, या फिर जिस फील्ड से भी, उसके परिवार से भी, जिस फील्ड में उसको एक्सपोज किया जाता है, वो उसी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इन्फ्लुएंस होता है. उसी रूप से जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे परिवार में कभी भी मुझे किसी चीज को लेकर फोर्स नहीं किया गया, और यही एक कारण है कि मुझे क्यूरियोसिटी में कभी प्रॉब्लम नहीं आई. अगर मुझे लगता है कि मुझे इस संप्रदाय के बारे में जानना है, इस किताब को पढ़ना है, मुझे हमेशा रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए. और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुझे कभी किसी एक फील्ड में कभी पर्टिकुलरली इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरा इंटरेस्ट है वो कई सारी फील्ड्स में स्प्रेड हो रखा है. तो वही चीज है कि जो आज के समय में इतिहास के छात्र हैं, वो आज के समय में कई बार होता क्या है कि वो एक नेशनल स्कूल से इन्फ्लुएंस हो जाता है. उनको लगता है कि जो जो भारतीयों ने किया बहुत अच्छा किया, कभी बिल्कुल गलत नहीं. हालांकि जब हम लोग कानपुर का इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग 1857 की क्रांति का इतिहास पढ़ते हैं, या फिर कोई भी अलग अलग चैप्टर्स हैं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि परफेक्शन की राह पे चल सकता है.
1: बिल्कुल.
0: और जब युद्ध की स्थिति होती है, जब वायलेंस होता है, जब हार्म होता है, उस स्थिति में एक इंसान जो होता है वो पागल हो जाता है. जो सेंस है वो सेंसेस अपनी खो देता है, और उस स्पेसिफिक कंडीशन में वो कुछ भी करना शुरू कर देता है.
1: कह सकते हैं मन स्थिति जो है वो उसकी बदलती रहती है.
0: और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति में भी जो अंग्रेजी महिलाएं और बच्चे थी उनका जो एक नरसंहार हम लोग कह सकते हैं,
1: हाँ हा।
0: बहुत बुरी तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है. चाहे वो बीबी घर मसाकर हो, जिसको ऑल दो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने और ब्रिटिशर्स ने उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लेट किया, ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी. आई जनरली रिस्पेक्ट की, हाँ, अ मर्डर इज रॉन्ग, एवरी किलिंग ऑफ ह्यूमन, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, किसी भी मोटिवेशन से हो, इट्स रॉन्ग. बट कई बार हम लोग अपने ही इन स्कूल्स ऑफ थॉट्स में उसको पोर्ट्रे कर देते हैं कि हम लोग हमेशा से परफेक्ट रहे. तो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेरा उनको बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पॉलिटिकल या फिर जो कंटेम्प्रेरी आइडियाज चल रहे हैं हमारे समाज में, उनसे इन्फ्लुएंस ना होकर जो फैक्ट्स हैं अपने खुद के एनालिसिस में फोकस करें, और एक नैरेटिव खुद से बनाएं, खुद से पढ़ाई करके, खुद से शिक्षा ग्रहण करके, और ना ही जो समाज में कंटेम्प्रेरी थियरी चले उनको डायरेक्टली अडॉप्ट करें.
1: आप मतलब सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को वो देखें, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या नया है या क्या सही है क्या गलत,
0: वह खुद से एनालिसिस करें, ना ही जो समाज में जो थियरी चल रही है उनको खुद से अडॉप्ट कर लें.
1: हाँ बिल्कुल, वैसा का वैसा ना अपनाएं, उसमें कुछ बदलाव जो है तो उसको समाज के या सभी के सामने लाने की कोशिश करें, है ना. तो संसाधन जो होते हैं हमारी पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान होते हैं, तो संसाधनों की कमी के बावजूद जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं बच्चे की हमें ये बनना है, बड़े सपने नहीं कह सकते इसको, कह सकते हैं कि उनके अंदर का जो एक बच्चा है वो कहता है कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये मतलब पूरे संसाधन नहीं है लेकिन फिर भी वो काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मेरे अनुसार आज के समय में संसाधन ना होना ही एक गलत टर्म होगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आज के समय में अगर आप लोअर इनकम कंट्रीज में देखें तो लो इनकम कंट्रीज में मुश्किल से 6% लो इनकम कंट्रीज है, वहाँ के छात्रों को डिजिटल युग का एक्सपोजर है और उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो हमें एक बहुत बड़ा एक डिविडेंड देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा डिवाइड देखने को मिलता है जो डेवलप कंट्रीज में है, डेवलपिंग कंट्रीज में, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। हम लोग ये देखते हैं हर जगह पे समान रूप से रिसोर्सेज नहीं है, उनकी कमी है। मतलब जब रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है यानी किताबें या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है, पर आज के समय में जैसा कि मैंने बोला कि एक जो डिजिटल युग आया है ये क्रांति है। आज के समय में अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूं, मेरे पास कानपुर में अपने क्षेत्र में मेरे पास कई सारी किताबों का एक्सेस नहीं था, और ऐसी भी कई सारी किताबें होती हैं जो आज से कितने सालों पहले, वो कई दशकों पहले बंद हो गई और आज के समय में कहीं मिलेंगी भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में मेरे पास जो आखिरी रिसोर्स बचता है वो होता है इंटरनेट। मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, किताब का नाम टाइप करता हूँ, थोड़ा सा मुझे गो थ्रू उसको करना पड़ता है, लेकिन फाइनली मुझे एक फाइल मिलती है जहाँ पे जो भी मेरा डिजायर्ड रिसोर्स है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आज के समय में जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि संसाधन की कमी होना ही गलत है, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से इंटरनेट में रिसोर्स है, मैंने भी इस साल कोई कोचिंग या फिर कोई ट्रेडिशनल टीचिंग या फिर कोई कोचिंग या कोई संस्थान ज्वाइन नहीं किया था अपनी क्लैट एलेट की तैयारी के, खुद से घर पे बैठ के इंटरनेट के थ्रू मैंने अपनी जो भी पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की है, वो की है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा साइन है कि आज के समय युग बदल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: आप किसी भी रिसोर्स पे, फिजिकल रिसोर्स पे या इंसान पे डिपेंडेंट नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए या फिर शिक्षा के लिए या फिर अपने जीवन में करियर ग्रोथ के लिए।
1: तो यशवर्धन, आप हमारे जो लिसनर्स हैं आकाशवाणी के और जो हमारा यूथ है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका उनके लिए?
0: मेरे अनुसार जो आज के समय में समाज में हम लोग एक चीज देख रहे हैं, बिकॉज मैं भी एक यूथ ही हूँ, मैं भी एक यंग इंसान ही हूँ, मैं भी एक टीनेजर हूँ,
1: बिल्कुल
0: आई एम 15 इयर्स ओल्ड राइट नाउ, और मैं देखता हूँ, मैं इंटरनेट में, क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं मैं बिल्कुल इंटरनेट से कट ऑफ हो रखा हूँ, मैं भी इंटरनेट यूज करता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि लोग आज के समय में कह रहे हैं कि कोई जाति सूचक शब्द हो गए, कोई जेंडर को टारगेट किया जा रहा है, जो मिसोजिनिस्टिक आइडियाज हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डिजिटल युग से क्रांति है, लोगों को शिक्षा मिल रही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफर है वो बहुत इजी हो गया, पर जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, जो नेगेटिव आइडियाज हैं, उनका भी ट्रांसफर बहुत ही अच्छे तरीके से इजी हो गया है। तो हमें ये समझने की जरूरत है, और आप उस चीज को हटा नहीं सकते।
1: बिल्कुल,
0: आप एक अकाउंट ब्लॉक करोगे, कोई व्यक्ति है वो आके कह रहा है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होने चाहिए, उनको वोटिंग राइट्स किसने दिए, ऐसा है वैसे, वो फालतू की मिसोजिनिज्म फैला रहा है इंटरनेट पे, आपने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, उसने दूसरा अकाउंट बना लिया, फिर से शुरू कर दिया, और यही चीज पूरी साइकिल चलती रहेगी। और ऐसा भी नहीं कोई एक व्यक्ति है, कार्यालय में, सामने रोड पे, इस शहर में, हर जगह पे कहीं ना कहीं पे कट्टरपंथ है। तो इसी प्रकार से हमें हमारे समाज में, हमारे छात्रों को और स्पेशली हमारे यंग माइंड्स को, यूथ को ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में हर कोई हमारा भला नहीं चाहता है, हमें खुद से देखना पड़ेगा, हमें खुद से चीजों को समझना पड़ेगा, और किस तरीके से पॉलिटिकल पोलराइजेशन, चाहे वो रिलीजियस पोलराइजेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो, हमें उसको अवॉइड करके खुद के करियर पे या फिर खुद की ग्रोथ पे वर्क करना पड़ेगा।
1: यशवर्धन, आपने अपने जो एक्सपीरियंस थे और अपने थॉट्स को हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं और हमारे जितने भी यूथ हैं उन सभी को आपने अपने बारे में बताया, उनको इनकरेज किया और बहुत अच्छे अच्छे उनको टिप्स दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, आज की इस विशेष भेंटवार्ता में हमने युवा इतिहासकार और व्यक्तित्व यशवर्धन सिंह जी से बातचीत की। उनकी उपलब्धियां ये सिद्ध करती हैं कि प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण के सामने उम्र की कोई बाधा नहीं होती। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: Did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
4: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
3: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
4: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
3: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
5: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षा।

0: सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो और FM आकाशवाणी रेनबो पर। आपके लिए अल्फाजन में करियर पाथवे में अब आगे बढ़ने का वक्त है और आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन या कह सकते हैं कचरा प्रबंधन। तो जब हम कचरा शब्द सुनते हैं ना दोस्तों, तो अक्सर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारे आसपास फैली गंदगी, डस्टबिन और साफ सफाई की तस्वीरें जो हैं वो उभर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कूड़ा कचरा आज करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री और हजारों रोजगार के अवसरों का अवसर है, आधार है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो पर्यावरण बचाने के साथ साथ शानदार करियर के मौके भी देता है, और ये क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको बताया, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके बारे में और बात करेंगे, फिलहाल आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एक बार

दोस्तों, करियर पाथवे में हम बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, लेकिन आखिर ये वेस्ट मैनेजमेंट है क्या? ये अपशिष्ट प्रबंधन है क्या? हर दिन हमारे घर, स्कूल्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज और बाजारों से न जाने कितने टन कचरा निकलता है, और इस कचरे को सही तरीके से इकट्ठा करना, उसे अलग करना, रिसाइकल करना और फिर उसे उपयोग में लाना, यही है वेस्ट मैनेजमेंट। और आज दुनिया यूज एंड थ्रो से आगे निकल चुकी है दोस्त, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल की ओर बढ़ रहे हैं हम, और इसी बदलाव ने नए करियर के दरवाजे भी खोले हैं। बस जरूरत है गोल सेट करने की। गोल्स होंगे तो योजना भी होगी और यकीनन सक्सेस भी।

लक्ष्य फिल्म से ये ब्यूटीफुल टाइटल ट्रैक आप भैया आपने सुना। और दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर गोल्स हैं तो योजना भी होगी और सफलता भी आपके पास होगी। फिलहाल वेस्ट मैनेजमेंट अपशिष्ट प्रबंधन में कौन कौन से करियर विकल्प हैं ये भी आप जानने के इच्छुक होंगे, तो वो भी आपको

0: बता दूं, आप वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियर जो है, ये विकल्प आपके पास है, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट आप हो सकते हैं, सॉलिड वेस्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं आप, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हो सकते हैं आप, ग्रीन एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं आप, अर्बन वेस्ट प्लानर बन सकते हैं आप, रिसाइकलिंग प्लांट मैनेजर। और इन सभी प्रोफेशनल्स की मांग सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में है, हर जगह हर किसी को जरूरत है वेस्ट मैनेजमेंट की के लिए, इस प्रबंधन के लिए। और कोर्सेज भी बहुत से उपलब्ध हैं जिनमें उत्पादकता और अपशिष्ट प्रबंधन है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, अर्बन प्लानिंग, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ये भी आप कर सकते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा आप कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आप कर सकते हैं, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत से संस्थान इनसे जुड़े विशेष कार्यक्रम और कोर्सेज रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं, अगर आप कहीं जा नहीं सकते, जाना नहीं चाहते, ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो भाई ये खास जानकारी आप सभी के लिए, लेकिन कैसे, कौन से स्किल्स आपको चाहिए बताता हूं, बहुत ही छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं, उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग आपका इंतजार कर रहा है आपके दिल में भीतर तक उतरने के लिए। बने रहिए सत्य के साथ, प्रोग्राम अल्फा जैन आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: पता है, पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
3: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
2: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
3: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
2: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
5: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी, बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
8: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: अपने वादे के मुताबिक सत्य एक बार फिर हाजिर है आप सभी के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं अल्फा जैन।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो इस वक्त आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक के सफर पर सत्य आपके साथ। और मैंने आपसे कहा था कि आपको बताऊंगा कौन कौन से स्किल्स आपको डेवलप करने हैं, विकसित करने हैं अपने भीतर। तो वो स्किल्स हैं सबसे जरूरी, समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, निर्णय लेने के कौशल, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप स्किल्स, एनवायरमेंटल अवेयरनेस आपके भीतर होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक कौशल भी होना चाहिए, डेटा एनालिसिस में जरूरत पड़ती है, और साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल, प्रबंधन कौशल आपके भीतर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होनी चाहिए, प्रशासनिक ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे जरूरी, इसे डेवलप कीजिए, रिसर्च स्किल्स ये भी होने चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ये सभी स्किल्स हैं जो जरूरी हैं, और इन स्किल्स के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो कचरे को एक समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में देखें, उस पर काम करें। और दोस्तों, भविष्य की बहुत सी संभावनाएं जो हैं इंतजार कर रही हैं आपका। जनसंख्या बढ़ रही है, शहर बढ़ रहे हैं, कस्बे बढ़ रहे हैं, और कचरा भी बढ़ रहा है, नो डाउट। ऐसे में वेस्ट मैनेजमेंट आने वाले दशकों का, इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है। और आज कई स्टार्टअप्स जो है प्लास्टिक को ईंधन में बदल रहे हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो ई वेस्ट से कीमती धातुएं निकाल रही हैं, कई युवा रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग के थ्रू अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। यानी आपके पास अवसरों की भरमार है, ढेर सारे अवसर हैं। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाता हूं, और फिर उसके बाद जो है आपको एक आखिरी संदेश भी दूंगा कि क्या जरूरी है इस फील्ड में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा इस

कार्यक्रम में आपको अंत में बताऊंगा, फिलहाल ये खूबसूरत गीत आप सभी के दिलों तक पहुंचता हुआ, क्योंकि यू आर द बेस्ट, इसलिए कहिए आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा, मैं सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचूंगा, लेकिन मेहनत करके।

यस, यू आर द बेस्ट, यस यस यस। तो भाई कार्यक्रम समाप्ति का वक्त है और एक आम इंसान जहां कचरा देखता है अपने चारों ओर, वहीं एक इनोवेटिव पर्सन अवसर देखता है। अगर आपको पर्यावरण से प्यार है, समस्याओं का समाधान ढूंढना आपको पसंद है और आप इस सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट आपके लिए एक बेहतरीन करियर हो सकता है। इसी संदेश के साथ सत्य लेता है आपसे अब इजाजत। अपने करियर के लिए मेहनत कीजिए, अपने स्किल्स को और बेहतर कीजिए। इसी के साथ अगली मुलाकात तक के लिए अपना प्यार, अपना स्नेह सत्य पर यूं ही बनाए रखिएगा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।

0: आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से विभूषित होने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित करेंगी। मैं शालिनी मित्तल अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर नितेश अरोड़ा के साथ आकाशवाणी की ओर से इस गरिमामय समारोह का सीधा प्रसारण आप तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में मौजूद है। ये अवसर केवल पुरस्कार वितरण का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले उन व्यक्तित्वों
2: के नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
3: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिलों के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी भी जारी है। गुजरात के राजपीपला में सत्र न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा और उनके पत्नी समेत 8 अन्य लोगों को नवंबर 2023 के एक मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में उन पर वन अधिकारियों पर हमला करने और जबरन वसूली का आरोप था। तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाज़ों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय पश्चिम एशिया में जुड़े सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रख रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बंटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दामदिनयाम के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बिसे सिंह मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

0: पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG करियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
2: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anucha Kumar. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Journalist P. Narayanan was awarded the Padma Vibhushan in the category of Literature and Education, and former judge K.T. Thomas was given the Padma Vibhushan in Social Work. Former tennis player Vijay Amritraj, actor Mamooty and playback singer Alka Yagnik received the Padma Bhushan Award. This year, the government had announced a total of 131

0: শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে ভজনৰ অনুষ্ঠান শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ঘণ্টেক পিছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ, সন্ধ্যা 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মৈ প্রিয়ঙ্কা অরোড়া। মুখ্য সমাচার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নে কহা, সুরক্ষা সহযোগ মজবুত করনে আর আতঙ্কবাদ তথা সাইবার সুরক্ষা জেসি চুনৌতিয়ং সে নিপটনে মে ব্রিক্স কি মহত্বপূর্ণ ভূমিকা। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अलनीनो के कारण कमजोर मानसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
3: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
4: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
5: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
5: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
5: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की और बढ़ना चाहिए।
6: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेस। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2वें समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cyber security to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South, and contribute to a safer, more secure, and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the center of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the country had so far seen around 43% less rainfall and that the monsoon was expected to remain weak in July too.
8: Overall rainfall has been 43% below normal so far, and according to the weather forecast, conditions are likely to remain weak until the week ending 2nd July. This means that our kharif crops could be affected. We have been preparing for such situations for quite some time. An assessment has also been carried out to determine how many districts may be affected. Based on the current projections, around 315 districts are likely to experience deficient rainfall.
7: Mr. Chauhan said that states have been advised to promote crops like pulses, coarse grains and oilseeds, which require less water and can still perform well under difficult conditions. He said scientific protocols, timely crop planning and district-level preparedness were being strengthened in coordination with the states. Mr. Chauhan added that Krishi Vigyan Kendra, AgroMet units and other advisory channels are being used to ensure that farmers receive timely guidance. The International Centre for Ocean Information Services, or INCOIS, has begun issuing specialised bulletins on the potential impacts of the ongoing El Nino event on maritime sectors. The first bulletin was released by Shivela Member of Parliament Konda Vishweshwar Reddy at an event in Hyderabad. The bulletin states that the El Nino event is steadily developing and is expected to peak during winters between November 2026 and January 2027. Sea surface temperatures in the Indian Ocean are projected to remain above normal till May 2027. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik are among the decorated recipients. A report.
9: This year, the government had announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Padma Bhushan was given to 7 persons, including former tennis player Vijay Amrit Raj, actor Mammootty and playback singer Alka Yagnik in today's ceremony. Politician Shibu Soren was awarded the Padma Bhushan posthumously. 57 persons received the Padma Shri Award, including cricketer Rohit Sharma, actor R. Madhavan and former Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati. Actor Satish Shah was given the Padma Shri posthumously. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah were among those who were present on the occasion. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
7: The National Testing Agency or NTA today announced the results of Common University Entrance Test CUET 2026 for undergraduate admissions. Candidates who appeared for the examination can now access their scorecards through the official CUET portal. According to NTA, over 11 lakh candidates appeared for the examination this year. A three-member special investigation team or SIT probing the alleged anomalies in donations and offerings at the Ayodhya Ram Mandir has submitted its initial probe report today. The report was submitted to Additional Chief Secretary Home Sanjay Prasad by SIT Head Vijay Vishwas Pant, who is Commissioner of Lucknow. The high-level panel was constituted by the state government to investigate alleged financial irregularities and misappropriation of funds. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. The Ministry of External Affairs today confirmed the death of 12 Indian citizens in an explosion in Qatar. Addressing media in New Delhi this afternoon, Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said a total of 66 people were injured in the incident and are currently receiving medical treatment.
10: We lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I am told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe. We are talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for the transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident.
7: Responding to the comments made by Pakistani Defence Minister Khwaja Asif on the situation in Pakistan-occupied Kashmir, the spokesperson said such remarks are desperate attempts by the neighbouring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
10: Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims with the contempt that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
7: Mr. Jaiswal said that since the signing of MOU between the US and Iran on the 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. He hoped that the remaining India-flagged vessels would also be able to cross the strait soon. The Tamil Nadu government has set up a helpline to assist people affected by the fire tragedy in Qatar. Chief Minister C. Joseph Vijay today announced an ex gratia of 10 lakh rupees each to the families of those who lost their lives in the incident. He said, the state government is taking steps to bring back the mortal remains of the three victims in coordination with the Ministry of External Affairs and the Indian Embassy in Qatar. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and the Prosperity Party on their decisive victory in the Ethiopian parliamentary elections. In a social media post, Mr. Modi said, India greatly cherishes its historic, multifaceted and deep-rooted ties with Ethiopia. Mr. Modi also reaffirmed his commitment to deepening the bonds of friendship between the people of India and Ethiopia. The Supreme Court today stayed the Delhi High Court order directing premature release of a lifetime convict in the 1993 Kolkata Bow Bazaar blast case. A bench comprising Justices P.K. Mishra and Sanjeev Sachdeva gave the interim relief on a plea filed by the West Bengal government challenging the 5th of June order of the High Court directing forthwith release of the 77-year-old convict Mohammad Rashid Khan. In Gujarat, Aam Aadmi Party MLA Chaitar Vasava may lose his assembly membership following his conviction in an assault and extortion case. Gujarat Legislative Assembly Deputy Speaker Purnesh Modi said that a person sentenced to 2 years of imprisonment cannot legally continue in office and is also barred from contesting elections for 6 years. Chaitar Vasava, his wife Shakuntala Vasava and 8 others were recently convicted by the Rajpipla Sessions Court in connection with a 2023 case involving the assault of Forest Department officials, extortion and offences under the Arms Act. The India Meteorological Department or IMD has issued an orange alert for thunder squall activity with wind speeds likely to reach 60 to 70 kilometers per hour over Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Delhi NCR today witnessed a sudden spell of intense weather as heavy rainfall, dust storms and strong winds swept across the region. Heavy rainfall conditions are likely over Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Odisha, Telangana, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the next 2 to 3 days. Meanwhile, IMD said heat wave conditions are likely to persist over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha during the next 2 to 3 days. In hockey, India defeated Pakistan 4-3 in the thrilling FIH Men's Pro League 2025-26 clash in London a short while ago. Pakistan took a shock lead against the run of play in the first quarter as Ahmed Nadeem scored after a penalty corner. After squandering a number of penalty corners, India finally equalised in the second quarter, courtesy Abhishek Nain's goal. Neelakant Sharma scored soon after to give India the lead. Sukhjeet Singh added India's third goal with a superb strike. Rajinder Singh sealed the win with a brilliant drag flick from a penalty corner in the fourth quarter. Shakil Moeen and Abu Mahmood scored